0: सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan. हेलो हेलो एंड वेलकम बैक। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतर आपके साथ पहुंच चुके हैं। आठ बजकर हो चुके हैं 5 मिनट यहाँ पर। थोड़ी देर पहले पिछले घंटे के एकदम आखिर में एक टीजर छोड़ के गई थी, जहां पर मैं कहने वाली मैंने ये बताया था एक क्लास 10th का ड्रॉप आउट कैसे बन जाता है IIM के स्टडी के रिसर्च का टॉपिक। और जब ऐसा कुछ होता है तो उसको हम वैभव सूर्यवंशी कहते हैं। यस दैट इज राइट। After one of the most amazing IPL seasons, ये हमारा 15 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी is heading from cricket field now to the classrooms, क्योंकि एक subject of a comprehensive multidisciplinary case study IIM इंदौर की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। And this is believed to be India's first academic study centered on a teenage sporting prodigy. Yeah, ये स्टडी जो है जो कि IIM इंदौर में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इट विल एग्जामिन द सोशल एंड साइकोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स बिहाइंड इस बच्चे का राइज। नाउ रिसर्चर्स जो है दे आर ऑल्सो गोइंग टू फोकस ऑन हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यंग टैलेंट कैन बी protected from the pressures of fame and expectations and mental health ke challenges jo hai that have ended many similar careers prematurely. To is aur jo hai aur kya different hona chahiye ya fir ye banda kis tarike se baakiyon se alag hai uske bare mein usko padha jayega. Can you imagine? I mean, you know, मैं ऐसा अब मुझे ऐसा लगता है अब क्या, एंड एक्चुअली आई बिलीव इन इट इन अ वे दैट यू नो मेहनत कभी ना कभी जो है वो रंग लाती ही है। इट्स जस्ट दैट वन हैज टू कीप वर्किंग टुवर्ड्स इट। जडेजा जी जो है उन्होंने भी अभी हाल ही में
1: भाई इससे अच्छा क्या खेलेगा आदमी। मैं तो चेयरमैन साहब दिखे थे, मैं तो कहा चेयरमैन साहब ये अभी टीम में नहीं डालोगे तो कब डालोगे। एक बात बताओ, उम्र हो या ना हो इससे अच्छा क्या खेलेगा आदमी।
0: इवन ही इज सेइंग कि मतलब इससे बेटर तो वो खेल नहीं सकता ना, तो बस इसको बस टीम में डालो, अब ग्रूम करो इस लड़के को। एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि अगले टूर में हमारे वैभव सूर्यवंशी बिल्कुल इंडिया की टीम के लिए खेलने वाले हैं। सो लेट्स सी व्हाट मैजिक, व्हाट मोर मैजिक दिस लिटिल बॉय हैज गॉट इन स्टोर फॉर अस, फॉर ऑल द क्रिकेट लवर्स अक्रॉस द ग्लोब। वेल, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। लेट्स टेक अ ब्यूटिफुल म्यूजिकल ब्रेक, सुभान अल्लाह कहते हुए, फॉर दिस गाय एंड फॉर अस ऑल्सो, फॉर दिस ब्यूटिफुल ट्यूसडे मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।

0: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
1: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
0: Thank you.
2: We love you.
3: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wedge and Non-Wedge dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 62 35 8840. Terms and conditions apply.
4: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे अंतरा.
5: That's right, and anniversary special mein Shahi Maharani is giving all their signature classic dishes at $25 plus. But of course, there are a lot of terms and conditions jo hai wo applied hai yahan par ki $100 plus ka ek aapka jab bill hoga to everything else inke classic dishes ड्रॉप कर जाएंगे $25 plus में. सो गो मेक यूज ऑफ इट. 30th जून तक ये ऑफर बिल्कुल वैलिड है. जस्ट गो क्रिएट सम मोर मेमोरीज एंड सेलिब्रेट विद शाही महारानी जिनके 25 साल पूरे हो रहे हैं. बिल्कुल फिलहाल वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर. मैं हूँ अंतरा आपके साथ. गुड मॉर्निंग. एंड यहाँ पर चल रहा है मस्ती का मंत्रा. नाउ कंगना रनौत, एंड देखिए वैसे भी उनका जो है वो बड़े नो फिल्टर जोन में आती है, एंड व्हाटएवर शी सेज बड़ा ही उनका आउटराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है. सो हुआ कुछ ऐसा दैट हाल ही में शी वाज प्रमोटिंग, उनका एक मूवी आने वाला है वेयर शी इज गोइंग टू बी एक नर्स के कैरेक्टर में वो नजर आने वाली है. बट ऑल्सो शी मैंशनड इस इवेंट पे कि इनका जो सोशल मीडिया पेज है, देर इज नो टीम बिहाइंड इट. देर वॉज अ पॉइंट वेन शी डिसाइडेड दैट शी विल टेक दैट ओनरशिप बैक. That is correct. Well, she took back full control अपने social media का अपने team से, and इस बात पे उन्होंने ये कहा कि उनके captions they felt like they are writing a letter to headmaster and apologizing to stay alive. So now she is like she posts directly calling comments irrelevant and preferring unfiltered communication अपने audience के साथ. I think जब आपकी personality यानी कि शख्सियत इस तरह की हो जाती है ना कि मतलब आपको किसी चीज से उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता या फिर डर नहीं लगता, आप सिर्फ उतना फिल्टर करके गए कि इसका जवाब देना है, इसका जवाब नहीं देना है. अगर मुंह तोड़ जवाब देना है वो भी मैं दे सकती हूँ, अगर मुझे जवाब नहीं भी देना है तो वो भी मैं कर सकती हूँ. बट एवरी थिंग हैज टू बी इन माई कंट्रोल एंड somehow I find it very very nice. क्योंकि अगर हंगामा करना भी है तो वो भी फुल अपनी चॉइस होनी चाहिए. नहीं, शी इज डेफिनेटली द क्वीन ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर फिलहाल उन्हीं की मूवी से ये वाला गाना. लेट्स गो.

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट
2: बच गए 8:30 स्टूडियो क्लॉक पे रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराप के साथ। गुड मॉर्निंग। चलिए सीधा चलते हैं सिंगापुर की सड़कों पर और आपको बताया जाए कि क्या है इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। हेवी ट्रैफिक आपको मिलेगा ऑन एवाई टुवर्ड्स टुवर्स एट नॉर्मंटन पार्क एग्जिट। स्टेशनरी व्हीकल आपको मिलेगा ऑन SLE टुवर्ड्स CTE अटलांटा एवेन्यू एंट्रेंस। हेवी ट्रैफिक की खबर ऑन PIE टुवर्ड्स टुवर्स एट क्लेमेंट एवेन्यू 6XZ। सो वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक का अपडेट। और हमारा कुछ अपडेट ऐसा है दैट द लायन सिटी चैलेंज का फर्स्ट फेज इज एब्सोल्युटली ऑन। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है टू पार्टिसिपेट लाइक अ लॉट ऑफ अदर पीपल हैव ऑलरेडी डन, ऑल यू हैव टू डू इज टेक्स्ट अस अ लायन LION। लायन सिटी चैलेंज इज अ गेम शो ऑफ इट्स काइंड एंड इट इज यूनिक एंड ऑफ कोर्स देयर आर प्राइजेस फॉर ग्रैब्स एज वेल। बट उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको हमें भेजना पड़ेगा। सो टेक्स्ट अस इमीडिएटली लायन एंड फिर उसके बाद आपको दो सवाल के जवाब देने पड़ेंगे एंड उसके बाद क्या होने वाला है our team will guide you for the same. So waiting for your participation as well. Good morning.
3: Aapki knowledge, aapki jeet.
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
4: You're tuned into Radio Musti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
5: 40% off, 40% joy Alukas.
6: 40% off? Oh my god, let's go!
7: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge.
8: Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
9: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
10: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं।
11: द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voice

0: to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सायानी बोल रहा हूँ।

0: Your weekly mood lift mantra. Only with RJ Antra.
1: इससे पहले कि आप कुछ बोलो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो फील कर रहे हो, मैं भी वही सेम टू सेम, मेरी भी फीलिंग बिल्कुल मैच करती है आपके साथ. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैं मंत्रा आपके साथ यहाँ पर. गुड मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर मस्ती का मंत्रा. एंड सो मच सो हैज बीन टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर गाना एंड मूवी है जवानी तो इश्क होना है. नाउ कुछ ऐसा हुआ कि भाई विद विनोद चोपड़ा नो उन लोगों ने केस वेस कर दिया कि हमसे परमिशन नहीं लिया, हमारा गाना ले लिया, ये दोनों ही गाने ले लिए, ऐसा थोड़ी ना होता है. और वो सारी कंट्रोवर्सी एक तरफ, वो दूसरी तरफ जो इस गाने के ओरिजिनल सिंगर है अभिजीत दास जो है, वो नाउ ही इज आल्सो नोन फॉर कि वो कभी भी कुछ भी कहीं भी बोल सकते हैं, एंड ही इज आल्सो काइंड ऑफ मूवर्ड टाइप जिसको बोलते हैं. हाँ जी, तो भाई उन्होंने इस गाने को वापस से जब रिक्रिएट किया गया फॉर दिस मूवी वरुण धवन वाला, तो कहा कि भाई सलमान खान और वरुण धवन में उतना ही फर्क है जितना अमिताभ बच्चन और असरानी में. सलमान खान बिकेम सुपरस्टार विद दिस सॉन्ग, वरुण धवन विल रिमेन नोबडी. ओ माय गॉड, या देर आर पीपल, मतलब जब कोई एकदम ही विदाउट एनी फिल्टर कुछ भी कहीं से भी कोई भी बोल जाता है, सो ही इज वन ऑफ देम. बट वेल, एज वी कैन ऑलरेडी ये जो गाना सुन के आपको लगा ही होगा कि क्यों किया, करने की जरूरत नहीं थी, नया गाना बना लो यार, कुछ नया सोच लो. नहीं, सलमा कह रही है लगता है सब गाने बिगाड़ कर ही मानेंगे. या आपको भी ऐसा लगता है? गुड मॉर्निंग.

0: to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
5: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
6: हाँ जी जी,
5: आधा kg मसूर दाल,
6: जी जी,
5: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
6: जी जी,
5: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
6: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
5: क्या
6: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर. जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
5: वाजी, क्या बात जी.
6: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर.
7: हर ट्यूसडे एक नया ट्विस्ट, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा.
8: वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराम के साथ यहाँ पे. गुड मॉर्निंग. यस भाई, व्हाट्सएप की टीम जो है बिल्कुल बहुत ही मेहनत के साथ काम करती हुई जा रही है. कुछ ना कुछ नया नया अपडेट ये लोग पायलट प्रोग्राम चलाते रहते हैं ये जानने के लिए कि भाई क्या क्या और कर सकते हैं और लोगों को और क्या पसंद आने वाला है. सो वेल, एक नया फीचर जो कि अभी ट्रायल बेसिस पर चलाया जा रहा है, दे आर टेस्टिंग दिस न्यू फॉरवर्ड ट्रांसपेरेंसी का अपडेट. ओके, सो मैसेजेस जो हम फॉरवर्ड करते हैं, दे मे सून शो द ओरिजिनल सेंडर का नेम एंड नंबर, व्हिच मीन फॉरवर्ड मैसेजेस वोंट फील एज लाइक, अभी तो अनोनिमस, अभी तो बस फॉरवर्ड हो जाते हैं, ऊपर फॉरवर्डेड लिखा हुआ होता है, बस उतना ही पता होता है. राइट नाउ ये कह रहे हैं कि द गोल इज टू रिड्यूस स्पैम एंड लिमिट द स्प्रेड ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन. इट ऑल्सो एम्स टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन साइड द कॉन्वर्सेशंस. यूजर्स जो है वो दे विल बी एबल टू सी वेयर अ मैसेज ओरिजिनली केम फ्रॉम. एंड अभी फिलहाल ये फीचर अभी टेस्टिंग स्टेज पे है, बट इट्स ऑलरेडी रेजिंग अ लॉट ऑफ प्राइवेसी डिस्कशंस. मैंने जैसे ही पढ़ा मैंने कहा एक मिनट सर, मेरे पास एक तो बहुत छोटा सा सवाल है कि अगर आप ओरिजिनल, जिसने भी ये शुरुआत जहां से की होगी उनका नंबर ही और नाम भी आप मुझे डिस्प्ले पे दिखा दोगे, तो ये प्राइवेसी कहां रही? मतलब नहीं, ये तो उसका नाम और नंबर तो मुझे मिल गया जबकि मैं उसको जानती ही नहीं हूं, है ना. बट दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या आपको जानना है कि ये कौन है जिसने, कहां से ये शुरुआत हुई होगी, किसने ये बनाया होगा और अपने फोन नंबर से. बिकॉज इन इंडिया फोन नंबर्स आर लाइक, या यू नो व्हाट आई मीन, राइट, कि मतलब कोई भी, किसी के पास भी 36,000 फोन हो सकते हैं और ये कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है. सो वेल, डेफिनेटली अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड इसके ऊपर, एंड देखते हैं क्या होता है. अगर हो जाएगा तो वो भी पता चल ही जाएगा. मेरे को तो अचानक से ही पता चलता है कि कुछ नया हो गया. ओ, अब व्हाट्सएप में ऐसा भी होता है. फिर मैं जाके चेक करती हूँ कि कुछ नया अपडेट आया है क्या. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग.

0: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
1: भाई ये लड़के मतलब कि ये जो टीनेजर्स हैं इस जनरेशन के, दे आर समथिंग एल्स ऑल टुगेदर. इस घंटे में शुरुआत में हमने 15 साल के टीनेजर की बात की थी, अगले घंटे में, क्योंकि ये घंटा अभी बस कुछ ही मिनटों में खत्म होने वाला है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर टीनेजर. ठीक है, 17 साल का ये बंदा और क्या किया इसने, लेट मी कम बैक एंड टेल यू ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. मिलते हैं अगले घंटे में.

0: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan.
1: वेलकम बैक। पहुंच चुके हैं 9 बजे के उस बार, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा के साथ है यहाँ पर और चल रहा है ऑफ कोर्स मस्ती का मंत्रा। आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट दिस बॉय। ओके, पता नहीं आपने ये न्यूज सुनी है कि नहीं सुनी है, बट इंडिया में इट्स लाइक एवरीवेयर एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, अबाउट CBSE, अबाउट दिस 17-year-old बॉय नेम्ड सार्थक सिद्धांत। अगर आप इंस्टाग्राम में काफी स्क्रॉल करते हैं तो आपने ये खबर कहीं ना कहीं यू वुड हैव कम अक्रॉस। भाई, इट्स फॉर दिस बॉय हु रेज्ड सम सीरियस क्वेश्चन अबाउट CBSE का 384 करोड़ का इवैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो CBSE के आंसर शीट जो है इस बार दे वर बीइंग स्कैन्ड एंड चेक्ड डिजिटली। ठीक है, व्हेन रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उन्होंने कंप्लेन किया दैट द कॉपीज कुछ जो है वो ब्लर हो गई है, सम आंसर शीट्स वर मिसमैच्ड एंड इन सम केसेस सम पेजेस वर आल्सो मिसिंग। नाउ व्हाइल मेनी पीपल गॉट एंग्री ऑन सोशल मीडिया, सार्थक सिद्धांत ये जो लड़का है इसने कुछ अलग किया। नाउ दिस स्टूडेंट ही बिगैन स्टडिंग मोर देन 500 गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के टेंडर्स एंड इवेल्युएशन के डॉक्यूमेंट्स। इसने पूरा बहुत केयरफुली एनालाइज किया क्लॉज after clause and found evidence that the rules jo tender ke hain appeared to benefit a particular company. Now according uske findings ke hisab se the same company jo hai received contract despite several discrepancies. Okay, Sarthak ne ye sari cheez document ki around like 15 different irregularities jo hai usko and publicly present kiya with evidence. Uska investigation jo hai that is what gained massive attention online. The issue it became so big that political leaders including Rahul Gandhi and they all shared it and they discussed it and eventually Sarthak was called before a parliamentary standing committee ke samne unko khada kiya gaya. CBSE ke officials reports ki agar mani jaye could not satisfactorily jo hai answer many of the questions which were raised over there. Afterward jo hai senior CBSE ke officials jo hai un dono ko transfer kar diya gaya. A high level committee was formed and there were assurances of greater transparency including making answer sheets available to students with marks visible. Now jab baad mein logon ne they tried to take credit for the investigation, Sarthak jo hai unhone respond kiya online with a lot of wit and sarcasm as well, but the most interesting thing is that he never demanded fame. Kai sare logon ne usko whistleblower ka jo hai tag laga diya. Usne kaha I just did my research, I wanted transparency and it is what it is. Yeah, आई मीन एक तरफ हम लोग जरूर बात करते हैं कि जेंजी ये जेंजी वो, बट एक तरफ ये भी है, सो वी मस्ट टॉक अबाउट इट। गुड मॉर्निंग।

0: Singapore Smart, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
1: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स मस्ती का मंत्र विद आरजे अंत्रा.
2: हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? व्हाट्स द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? सिंगापुर के नेशनल फ्लावर का नाम क्या है? Right, we all know the answers to these. Exactly. Radio Masti 24/7 live. पर मैं हूँ अंतराप के साथ. यहाँ पर चल रहा है मस्ती का मंत्र. 9 बजकर हो चुके हैं 19 मिनट. And if you could answer these, then definitely आप जो है participate कर सकते हो Lion City Challenge में. A game show like never before. Of course, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ knowledge की जीत होने वाली है. And yes, there are winnings up for grab. But for that, you have to participate in it. And participate करने के लिए यू हैव टू टेक्स्ट अस लायन LION टू 9151-8963. वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी. अगर आपने अभी तक नहीं किया है देन या जस्ट सेंड इन द टेक्स्ट एंड गेट रेडी टू प्ले सम रियली रियली गुड क्वालिटी गेम एंड समथिंग. ऐसी ऐसी चीजें जो आपने पहले नहीं की होंगी. या That we definitely guarantee you. But coming back to हमारी अगली खबर यहाँ पर. थोड़ी देर पहले हम बात करते हैं WhatsApp introducing all of these new things जो they keep coming up with. Meta also has started testing एक नया feature called series for reels on Instagram and Facebook. Okay, now ये जो फीचर है इट विल अलाउ क्रिएटर्स टू ग्रुप रिलेटेड रील्स जो है इनटू वन सिंगल कलेक्शन मेकिंग इट इजियर फॉर यूजर्स टू वॉच कंटेंट जो है एक ऑर्डर में आप देख पाओगे. लाइक जैसे हम लोग सीरीज में एपिसोड्स देखते हैं ना. Just exactly like that. Now, the test is currently limited to a very small group of creators jinka content jo hai includes tutorials, educational videos, challenges and storytelling formats jinke hote hain. Now users can view all episodes in one place and jump to the earlier parts and save kind of collections to watch it later. Meta ye keh rahe hain that ye jo feature hai ye design kiya ja raha hai to improve the viewing experience for content that follows a continuous storyline. Now the move comes as Meta looks to compete more directly with the TikTok, like a longer form video offerings and encourage deeper kind of engagement in platforms. But now company has also hinted that monetization options for series could be introduced in the near future as well. Main ye keh rahi hu ki aur kitna hum log aise hi matlab sare ye रील्स और ये सारी चीजों से जो है इनमें काफी इन्वॉल्व हो रखे हैं. हमारे व्यूइंग एक्सपीरियंस को और कितना अच्छा बनाएंगे. हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि नहीं हमें जितना है हम इसे इसी से ही हमें डील कर लेने दो और इसमें क्या. बट वेल वक्त के साथ हर चीज इवॉल्व करती रहनी चाहिए. ये सारी चीजें तो होनी होनी है. नहीं जा सकते. एक काम करते हैं आप ही की सुन लेते हैं है ना. सलमान ने कहा कि पिछले घंटे तुमने वो वाला गाना चलाया था रीमेक. कैन वी लिसन टू द ओरिजिनल प्लीज. ऑफ कोर्स हियर वी गो. गुड मॉर्निंग.

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: आई सो अग्री कि भाई ओरिजिनल का ना कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ 90s पर्सन डेफिनेटली नहीं हो सकता। 9:30 हो चुके स्टूडियो क्लॉक में, चलिए आपको ट्रैफिक का अपडेट दिया जाए। इस घंटे का हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा ऑन AYE टुवर्ड्स MCE बिटवीन बनावस्था एंड जरोंग टाउन हॉल रोड। व्हीकल ब्रेक डाउन की खबर ऑन PIE टुवर्ड्स चांगी आफ्टर बुक एट बतौक रोड, और एक और व्हीकल ब्रेक डाउन की खबर है ऑन एयरपोर्ट रोड अगर आप जा रहे हैं टुवर्ड्स पोर्ट्स टाउन बिफोर यू नो लिंक, अवॉइड करें लेन नंबर 4। सो वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट जो कि आवा जावा टाइप है कि आता है और जाता है। हम भी यहां पर करेंगे कि गाना आएगा, हम जाएंगे एंड मिलेंगे इस गाने के उस पार। गुड मॉर्निंग।

0: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
1: 9:37 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक पे, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतरा आपके साथ डेफिनेटली है ही है। शाही महारानी के 25 साल पे आप जाके वहां पर बिल्कुल शाही स्टाइल में $25 प्लस में उनके सारे सिग्नेचर क्लासिक डिशेस का लुत्फ उठा सकते हैं वो एक जगह, क्योंकि वो जो है उसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 30 जून यानी कि एंड ऑफ दिस मंथ तक है। लेकिन जब शाही इस तरह की बात हो तो शाही लगना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं, और शाही लगने के लिए हमारे जहन में एक ही चीज आता है कि भाई कुछ अच्छी सी ज्वेलरी हो जाए तो बात बन जाए। और जब इस बारे में इस डिपार्टमेंट में हम एंटर कर जाते हैं तो नाम आता है ज्वेलर का, द वर्ल्ड फेवरेट ज्वेलर में, है ना क्या कनेक्शन है वो, लाइक सीरियसली। बट वेल भाई ज्वेलर के पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, वो इसलिए नहीं क्योंकि इनका जो ये 40% वाला ऑफर चल रहा है ना उसके लिए वक्त नहीं बचा हुआ है। 14th of June जो है तब तक ही ये वाला जो है ऑफर वैलिड है। दे आर गिविंग दिस इनक्रेडिबल फ्लैट 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड पोलकी एंड प्रेशियस ज्वेलरी। अब ज्वेलर का नाम बताने की जरूरत नहीं है, इट्स लाइक अमिताभ बच्चन, ठीक है, जहां से ये खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है एंड भीड़ काफी सारी होती है। मैंने खुद जाके देखा हुआ है वहां पर एंड यू नो आई लव ज्वेलर का वैरायटी, आई लव द फैक्ट दैट यू नो मेरे पास ऑप्शंस रहते हैं टू चूज फ्रॉम एंड देयर इज डेफिनेटली, जब भी जाओ खाली हाथ यहाँ से कोई वापस नहीं आता, मंदिर के जैसे कुछ हो गया है ऐसा हाल यहाँ पे। सो बट मेक यूज ऑफ दिस फ्लैट 40% ऑफ जो मेकिंग चार्जेस पे आपको मिल रहे हैं, हेड टू ज्वेलर का 312-420 सरंगुन रोड, किसी भी इनके आउटलेट में जाएं, बट डेफिनेटली 14th June से पहले पहले होकर आए।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: Are you ready?
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
4: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus. Offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
5: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: जे एक नया ट्विस्ट, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
1: हाँ जी, हाँ जी, मेरे लिए भी आप काफी हो। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा आपके साथ सुबह सुबह से बिल्कुल बनी हुई थी और 7 बजे से अब बजने वाले हैं घड़ी में 10, विच मींस अंतरा के जाने का वक्त हो रहा है। मस्ती का मंत्रा जो है यहाँ पे रैप अप होता है। यस, इट वाज अ ट्यूसडे मॉर्निंग, इट इज अ ट्यूसडे मॉर्निंग इन फैक्ट, क्योंकि सुबह सुबह मेरी आवाज आए तो समझ जाना चाहिए। ठीक है, अभी आएगा एक छोटा सा 1 घंटे का ब्रेक म्यूजिक कैफे का, बैक टू बैक म्यूजिक, जरा एंजॉय करे, थोड़ा सा आराम आराम कर ले, उसके बाद हमारी नुपुरवा आ जाएगी। जी हाँ, एक और कनपुरिया द नुपुरवा, तो वो मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आ जाएगी और फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी शाम के टाइम पे, क्योंकि आज है वही दिल मस्ती दिल से वाला दिन। सो वेल, लेट्स डू ऑल ऑफ दिस एंड मोर एंड लेट्स कीप द मस्ती ऑन, जैसा कि हम हमेशा ही करते हैं। आज का कुछ ऐसा मैं विश करना चाहती हूँ कि ठीक है, एफिशिएंट भी हो, प्रोडक्टिव भी दिन हो, सब कुछ हो, बट देयर हैज टू बी जस्ट फाइंड दैट वन हैप्पी मोमेंट विच यू कैन, यू नो, रात तक सोचने पर भी आपको चेहरे पे स्माइल आ जाए। मैं ऐसा विश करती हूँ कोई एक ऐसी चीज हो जाए कि मतलब दिल खुश हो जाए आपका, एंड फिर जब आप रात को बिस्तर पे लेट कर ऐसे ही सोचो ना, हाउ वाज द डे, सो दैट वेरी थॉट एंड दैट वेरी इंसिडेंट मे बी कम्स टू योर माइंड एंड यू जस्ट गो लाइक स्माइलिंग, एंड फिर मुझे याद करना कि हाँ, अंतरा ने कहा था। देखना, मैंने बोला है, होकर ही रहेगा, है ना। चलो फिलहाल मैं चलती हूँ, बाय बाय एंड हैव अ वेरी वेरी गुड डे।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। DJ

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the Devotional Hour on Radio Masti 24/7. Masti pe bhakti subah 6 baje se. Monday blues, not on our watch. Wake up to world news, fresh updates aur thoda Bollywood ka maza bhi. Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 a.m. onwards.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Some shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for encore show timings.
1: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
2: 3, 2, 1.
3: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है.
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
5: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे.

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

0: नाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: जीरो, वो क्या होता है? हमारा पेशेंस लेवल तो माइनस की तरफ जा रहा है। सो हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपसे मुलाकात करने के लिए आ चुकी है। एंड द पॉइंट इज कि ऐसा क्या चल रहा है लाइफ में कि हम किसी की दो बातें तक नहीं सुन पा रहे हैं। मतलब हमारी गलती है और सामने वाले ने हमें कुछ डांट कर बोल दिया तो हम बल्कि उसे चार बातें और सुना कर आ जा रहे हैं। मतलब पेशेंस लेवल जो है ना, जीरो जीरो जीरो जीरो जीरो से माइनस माइनस की तरफ जाता जा रहा है। हाँ भाई, तो भाई आपकी नजर में कोई शख्स है ऐसा जिसका पेशेंस लेवल सच में इतना ही गिर गया है और उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता है? या फिर क्या पता आप ही तो वो इंसान नहीं है? हा? तो क्विकली आप इस बात का जवाब दे सकते हैं 9151 8963 या ऐप पर कमेंट करके। मैं आरजे पर बहुत सारी बातें आपके लिए लेकर आ चुकी है। सो डोंट गो एनीवेयर, आती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual-focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning!
5: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
6: हाँ जी जी,
5: आधा केजी मसूर दाल,
6: जी जी,
5: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
6: जी जी।
5: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
6: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
5: क्या जी?
6: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
5: वाजी क्या बात जी।
6: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
2: ऐसा क्यों होता है कि लोग ना दो टॉपिक ढूंढ के कहीं ना कहीं कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, मतलब अब ये लोगों की फेवरेट हैबिट बन चुकी है। हाँ, सो हेलो हाय, मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड द पॉइंट इज कि बचपन में जो एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कंपेयर करके हमें सिखाया गया था, वो हमने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इतना इंप्लीमेंट कर दिया है, इतना ज्यादा इंप्लीमेंट कर दिया है कि हमें खुद भी नहीं पता चल रहा है। सो मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी, एक मूवी को दूसरी मूवी से तो कंपेयर किया जाता ही था, लेकिन अब एक ही मूवी के अंदर सीनियर जूनियर एक्टर्स को भी कंपेयर किया जा रहा है। फॉर अ वाइल आपको बता दूं, इन अपकमिंग डेज अल्फा मूवी जिसमें आलिया भट्ट, शार्वरी, बॉबी देओल एंड अनिल कपूर आपको की रोल में नजर आने वाले हैं, इसमें इंटरनली कंपेरिजन शुरू हो चुका है। हां जी, आजकल बड़े बड़े जगह हेडलाइंस क्या बनाए जा रहे हैं कि भाई आलिया भट्ट जो है ना वो बॉबी देओल को कंपीट करने वाली है, तो कैसा रहेगा ये कंपैरिजन देखेंगे आप बहुत जल्द अल्फा मूवी में। और ये कंपैरिजन बॉबी देओल ने खुद जब पढ़ा तो उन्हें भी हंसी आ गई कि यार आजकल दुनिया में क्या क्या चल रहा है। चलिए चलिए, चलते चलते बहुत सारे गाने

0: और सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: घर में ना अलग अलग प्रजाति के लोग होते हैं। कुछ लोग नूडल्स की तलाश में सुबह सुबह किचन की तरफ निकल जाते हैं और कुछ छोले भटूरे की तलाश में और कुछ जूस ड्राई फ्रूट्स की तलाश में निकल जाते हैं। तो घर की इन सब प्रजातियों के लिए एक कॉमन एरिया होता है हमारा घर का ग्रोसरी स्टोर, जिसे आप क्विकली पूरा भर सकते हैं। कहाँ से? GGMartOnline.com से। अब बात जब प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स की आए, ऑर्गेनिक फ्रूट्स की आए, हेल्दी ग्रोसरी की आए या डेली एसेंशियल्स की आए, सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा, एंड दैट इज GGMartOnline.com। बाय द वे, आप जब अपना इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाए तो उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप कर दे 9151896 3 पे, तो क्या पता एक बेहतरीन सी डील हमारी तरह से भी मिल जाए। तो चलिए चेकआउट कीजिए योर पर्सनल ग्रोसर पार्टनर जो आपके डोर स्टेप तक आ सकता है, दैट इज GGMartOnline.com। RJ नुपुर आपके साथ मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
2: देखो बुरा तो लगता है जब आप किसी से एक तरफा मोहब्बत करें या एक तरफा कॉलिंग करें। हां जी यार जेन ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ जुड़ी हुई है। एंड समटाइम्स जब आप किसी को बहुत बार कॉल करते हैं और सामने से कोई रिस्पांस नहीं आता तो आप गुस्से में एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि शायद सामने वाला आप में इंटरेस्टेड नहीं है, राइट? तो मैं आर जेन ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि जो फिल्म ऑर्गेनाइजेशन है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसने रणवीर सिंह को टीम से बैन कर दिया है, मतलब उनके संग अब मेकअप आर्टिस्ट से लेकर क्रू मेंबर से लेकर डायरेक्टर्स काम नहीं कर सकते, बॉयकॉट किया जा रहा है कहीं ना कहीं, जो उनका एक अलग कॉम्प्लिकेशंस चल रही है फरहान अख्तर के साथ, राइट? इन चीजों को लेकर तो उन्होंने बोला कि उन्होंने रणवीर सिंह से बहुत बार बात करने की कोशिश करी लेकिन सामने से रिस्पॉन्स ही नहीं आया, जिसका गुस्सा निकाला गया है ये। एनीवेज गुस्सा नहीं, एक अच्छी वाली बात बताऊं कि आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाए, हाँ तो चलो बता देती हूँ। रेडियो मसी 24/7 लाइव आपके लिए लेकर आ चुका है लायन सिटी चैलेंज। हाँ जी, अगर आप अपने आसपास सिंगापुर में क्या चल रहा है, जनरल नॉलेज में क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल हर कैटेगरी में क्या कुछ चल रहा है, इन सारी बातों में लेते हैं दिलचस्पी, तो आपके नॉलेज का होने वाला है टेस्ट। तो आपको इस स्मार्ट गेम शो में पार्टिसिपेट करना चाहिए। पार्टिसिपेशन के लिए आप हमें लिखकर भेजिए व्हाट्सएप पर 9151 8963 हमारा नंबर, जिसमें आपको लिखकर भेजना है लायन सिटी चैलेंज। हाँ जी, आप जैसे ही द लायन सिटी चैलेंज लिखकर हमें भेजेंगे तो आपको आगे के स्टेप्स हमारी तरफ से व्हाट्सएप पर पॉपअप हो जाएंगे। क्विकली पार्टिसिपेट करो, बहुत सारे प्राइजेस जीतने हैं आरजे नुपुर आपके साथ।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

वो कहते हैं ना कि रिश्तों में थोड़ा सा भी पैसा घोल दिया जाए, डॉलर घोल दिया जाए, यूरोस घोल दिया जाए, व्हाटएवर द मनी घोल दी जाए, तो रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, है ना। लेकिन इसकी वाइसी वर्सा सिचुएशन निकल कर आई है कि जैसे ही आप फिल्मों में थोड़ा सा पैसा शो ऑफ करेंगे, निकाल के लाएंगे, तो लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब एक पीआर टैक्टिक बना दिया गया है इसे। मैं नहीं बोल रही हूं, मैं आरजे नुपुर तो बहुत भूली है यार, मैं ये सब बातें कहां बोल सकती भाई। हाँ, मनोज बाजपेयी जी, जिन्हें 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, उन्होंने जरूर बोल दिया। बिकॉज जिस तरह से हैवी बजटेड मूवी, वो चाहे अपकमिंग रणबीर कपूर स्टारर रामायण हो या महेश बाबू स्टारर वाराणसी मूवी हो, ये दोनों ही हैवी बजट के साथ मार्केट में उतारी जा रही है। और इसका जो बजट है वो जान बूझ के फ्लॉन्ट किया जा रहा है ताकि लोगों को लगे कि ऐसा क्या खर्चा हुआ है कि इन मूवीज में इतना पैसा लग गया। हाँ, ये एक तरीका हो सकता है मूवी प्रमोशन का। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में रहो।
2: देखो ऐसे सोना चांदी तो हर कोई खरीदता है, पर स्मार्ट बायर्स पता है कौन होते हैं? जो सही ऑफर का इंतजार करते हैं। बाय द वे सिंगापुर में अब इंतजार खत्म हो चुका है। हाँ जी, वन ऑफ द फेवरेट वर्ल्ड्स फेवरेट ज्वेलर आप कह सकते हैं जोया लुकास में ऐसे ऑफर चल रहे हैं कि आप सिर्फ गोल्ड ही नहीं, डायमंड ही नहीं, पोल की और प्रेशियस ज्वेलरी भी खरीदना चाहोगे। वहां पे चल रहा है फ्लैट 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस एंड ये जो है लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, 14th of June तक आप अवेल कर सकते हैं। पर आपको बता दूं डायमंड एक्सचेंज पर 100% वैल्यू और इजी पेमेंट प्लान्स भी अवेलेबल है, ताकि आप ये धमाकेदार ऑफर्स को ना अवेल कर पाए। तो सिंगापुर में आप सिरानगुन रोड डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं फॉर द बेस्ट ऑफर्स। आज मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: और सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: अब अगले महीने एक और शादी है जिसमें आपको और मुझको बुलाया भी नहीं गया है, बट ठीक है, हमारा तो दिल बहुत बड़ा है, हम तो बात कर लेते हैं सबकी। आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ बताना चाहूंगी, आमिर खान ने अपनी शादी तीसरी बार खुद से पक्की कर दी है। हां जी, उनकी जो अभी रीसेंट गर्लफ्रेंड चल रही है उनसे वो शादी करने वाले हैं अगले महीने 5th of July। गौरी उनकी पत्नी बनने वाली है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखो, आमिर खान की शादी तो पक्की हो गई है और पक्के तो आपके लिए बहुत सारे कैश प्राइजेस एंड गिफ्ट्स भी हो गए हैं, बिकॉज मस्ती मीडिया नेटवर्क आपके लिए लेकर आ चुका है द लायन सिटी चैलेंज, जिसमें कोई और नहीं आपका IQ विन करने वाला है। अगर आप अपने आसपास सिंगापुर में क्या चल रहा है, जनरल नॉलेज में क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, हर कैटेगरी में क्या कुछ चल रहा है, इन सारी बातों में लेते हैं दिलचस्पी, तो आपके नॉलेज का होने वाला है टेस्ट और विनर्स को तो बहुत कुछ मिलने वाला है। पार्टिसिपेट कीजिए, सिर्फ मेरी बातें मत सुनिए। टाइप कीजिए लायन LION और टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप पर हमें भेज दीजिए 9151896 3 पे। फिर आगे के स्टेप्स क्या होंगे हम आपको रिवर्ट बैक करके बता देंगे, तो जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करो। सिंगापुर स्मार्टेस्ट माइंड कुड बी यू। मस्ती मॉर्निंग शो पर मैं आरजे नुपुर।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी?
1: Order today from GG Mart, your personal grocer. 40% off, 40% joy alukas.
2: 40% off? Oh my god! Let's go, let's go!
3: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर।
0: अगर आप किसी एक्टर के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं या कुछ भी नहीं सोच रहे हैं ना, तो ये आप सोच नहीं रहे हैं, आपको सुचाया जा रहा है। मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात? शब्दों पे मत जाइए, फीलिंग्स पे जाइए। सो हेलो हाय, मैं आज यूनिफॉर्म मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड द पॉइंट इज कि एक टाइम पर हमने बहुत बार ये सोचा कि इमरान हाशमी को एक्टिंग आए ना आए, उन्हें किसिंग बहुत अच्छी आती है और उन्हें एक सीरियल किसर कहा जाने लगा। तो ऐसा शायद हम सोच नहीं रहे थे, लेकिन हमें फोर्स किया गया सोचने के लिए। क्यों? क्योंकि पीआर एजेंसीज को ये सोचने पर मजबूर किया गया और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसे ही तरीके से एडवर्टीजमेंट करने को कहा गया। राइट, महेश भट्ट साहब जो है ना, उन्होंने इमरान हाशमी के साथ बहुत सारी फिल्में करी हैं, राइट, और उन सब में ही सेंसेशनल अवतार में इमरान हाशमी नजर आए हैं। और अगर उनकी पीआर टीम इस तरह से काम ना करती तो शायद आप आशिक बनाया आपने जैसी मूवीज ना देखते। तो इट वॉज ऑल अबाउट पेड पीआर स्टंट्स, लेकिन पब्लिसिटी भी वही अच्छी होती है जिसमें पता भी ना चले और हम कुछ और सोचने लगे। राइट, आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ आती हूं मैं जस्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में रहो।
2: ए जय माताजी ने हम कहीं ने कहूं के वाह फरे वादळ फरे ने वायरो फरे, पण एक वार बोल्या पछी मारा मित्रों आ मित्रों कदी ना फरे के हा।

से देखा तो आप इंटेलिजेंट नजर आ रहे थे, पास आकर देखा तो आप तो सच में इंटेलिजेंट थे। आप सिर्फ अपने ही करियर में नहीं बल्कि आसपास जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, हर चीज जो सिंगापुर में भी बल्कि चल रही होती है आप हर चीज पे नजर रखते हैं। तो भाई सिंगापुर का वन ऑफ द स्मार्टेस्ट गेम शो आ चुका है मस्ती मीडिया नेटवर्क पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या क्या क्या, मैं आरजे अनुपुर बताना चाहेगी आ चुकी है कि द लायन सिटी चैलेंज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट, इन सारी कैटेगरीज में इंटरेस्ट रखने वालों को मिल सकता है आने वाले वक्त में बहुत सारे कैश प्राइजेस एंड गिफ्ट्स। सो पार्टिसिपेट कीजिए, टाइप कीजिए लायन LION और भेज दीजिए 9151896 पे टेक्स्ट या व्हाट्सएप करके, एंड डेफिनेटली हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आगे के स्टेप्स आपको बताए जाएंगे। अरे आप स्मार्ट है यार, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। आरजे अनुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी।
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
3: क्या
4: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
3: वाजी क्या बात जी।
4: Order today from GG Mart, your personal grocer.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर,
0: यू नो वॉट, सिंगापुर से सोनम कपूर का एक बहुत पुराना रिश्ता है, आपको नहीं पता था? चलो मैं बताती हूँ। आज है सोनम कपूर का बर्थडे और इस ओकेजन पर जानना तो बनता है। सो हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड द पॉइंट इज कि ग्रेजुएशन जो है ना वो सोनम कपूर ने बॉम्बे से करी है, फिर उसके बाद इन्होंने इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में भी डिग्रीज ली, लेकिन कॉलेज जो है इन्होंने यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज सिंगापुर में अटेंड किया, तो हुआ ना रिश्ता पुराना। एंड यू नो वॉट, यहाँ रहते रहते इन्होंने कॉलेज की फीस के अलावा छोटे मोटे एक्सपेंसेस को हैंडल करने के लिए इधर उधर छोटी छोटी जगह में वेट्रेस का काम भी किया। बताओ यार, हाँ देखो सिंगापुर आके आप प्रिवेसी का मतलब समझ जाते हैं, आप इंडिपेंडेंट होने का मतलब भी समझ जाते हैं। सो अभी अनिल कपूर की फैमिली से बिलोंग करते हुए भी इन्होंने एक पॉइंट पे जाके उसका फायदा भी उठाया। संजय लीला भंसाली के साथ ये असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह काम करने लगी। एंड यू नो वॉट, ब्लैक मूवी के दौरान इन्होंने संजय लीला भंसाली को असिस्ट भी किया था और फिर मूवीज में आने से पहले एक अच्छा खासा वेट लॉस भी किया था। बाय द वे, सोनम कपूर को आप हल्के में मत लेना, वो ट्रेंड क्लासिकल डांसर भी है, जिसकी झलक आपने इस गाने में जरूर देखी है।

इज राइट. रांझना मूवी का ये गाना कमिंग अप एंड सोनम कपूर को वंस अगेन हैप्पी बर्थडे मेरी जान. आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ.

0: 40% off. 40% Joy Alukas.
1: 40% off? Oh my God! Let's go! Let's go!
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Soon, soon, baba, soon, soon, baba, soon, soon, soon. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
4: मैं आरजे अनुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

पूरी दुनिया के सवालों के जवाब दे सकते हो, लेकिन जब फैमिली पे ये क्वेश्चन आता है ना कि सुनो फैमिली डिनर करने कहाँ जाना है, कौन लेगा ये जिम्मेदारी प्लान करने की, तो सबके सब साइलेंट हो जाते हैं। देखो जब फैमिली डिनर की बात आए और आपको नॉर्थ इंडियन कुजीन चाहिए हो, तो इसका एक ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है जहां आपको जाने से डांट भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज वहां के रिव्यूज इतने अच्छे हैं कि खाना खाने के बाद सब आपकी तारीफ करेंगे। दैट इज शाही महारानी एट रैफल्स सिटी सेंटर, राइट। एक ही छत के नीचे आप ना बहुत सारे ऑफर्स भी अवेल कर सकते हैं। अभी रिसेंटली शाही महारानी रेस्टोरेंट को 25 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं सिंगापुर में, एंड इसी ओकेशन पर उनके जो सिग्नेचर डिशेज है ना वो सिर्फ आपको $25 में मिल रही है, जैसे कि मुर्गी टिक्का से लेकर चिकन मक्खन वाला से लेकर पालक पनीर तक। तो अगर आपकी टेबल का बिल मिनिमम $100 निकल कर आया तो आप ये ऑफर्स अवेल कर सकते हैं, बहुत सारी डिशेज $25 में अनलॉक कर सकते हैं। ये ऑफर भी सिर्फ 30 जून तक है, तो आने वाले वीकेंड में प्लान बना लो यार। आज मस्ती मालिक।

0: to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Veg and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
5: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
6: हाँ जी जी,
5: आधा kg मसूर दाल,
6: जी जी,
5: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
6: जी जी,
5: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
6: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
5: क्या जी?
6: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर. जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी एड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
5: वाजी, क्या बात जी.
6: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर.

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि भाई कोई मूवी रिलीज करी जा रही है ब्रॉड सोच के साथ, लेकिन लोग उस मूवी के अगेंस्ट जा रहे हैं। बहुत बड़ा रीजन भी है कि शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना एंड कृति सैनन स्टारर कॉकटेल मूवी का दूसरा पार्ट जो ट्रेलर की तरह हमें दिखाया गया है और उसमें थ्रीसम दिखाया गया है, ये एंगल लोगों को पसंद नहीं आया है। तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग ये मूवी कुछ ज्यादा ओपन माइंडेड निकल कर आ रही है, तो कमेंट सेक्शंस नेगेटिव पे नेगेटिव जाते जा रहे हैं। देखो, आपके स्मार्ट माइंड को देखते हुए आ चुका है सिंगापुर में द लायन सिटी चैलेंज, राइट? इस चैलेंज में आपका दिमाग जीतने वाला है, आपकी नॉलेज जीतने वाली है। तो जनरल नॉलेज में आप इंटरेस्ट तो अपने कॉलेज टाइम से रखते हैं, करंट अफेयर्स, ओहो, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, क्या कुछ आप नहीं जानते हैं। सो व्हाई नॉट, मैं आरजे नुपुर आपको बता रही है कि आपको पार्टिसिपेट करना है लायन सिटी चैलेंज में, जो कि मस्ती मीडिया नेटवर्क आपके लिए लेकर आए हैं। इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए आप सिंपली हमें टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप कीजिए, जिसमें टाइप करके भेजना है आपको लायन, नंबर है हमारा 9151 8963। ऑन दिस नोट, मी आरजे नुपुर साइनिंग ऑफ, मुलाकात होगी 5 PM ऑनवर्ड्स डियर मस्ती दिल से शो पर।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
4: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
5: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
4: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
5: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा only on Radio Masti 24/7 Live.
4: For show timings, check out the Radio Masti 24/7 Live app. RJ Mugdha ke saath, gossip bhi, masti bhi, sarcasm bhi. Sab kuch sirf masti hangout.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक

0: Monday Blues, not on our watch. Wake up to world news, fresh updates aur thoda Bollywood ka maza bhi. Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 a.m. onwards.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले. तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान.
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ. जोश में
4: रहो. मेरे करण अर्जुन आएंगे?
5: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे.

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट.

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.
0: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
2: Only on Radio Musty 24/7 Live. A part of Musty Media Network Singapore.
3: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे।

0: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे?
1: एक्साइटेड?
2: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ड्यूटी पर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

0: आएंगे
1: न करण अर्जुन आएंगे न ही आरजेएस आएंगे, फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे आपकी नॉलेज आपकी जीत।
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: Singapore, prepare for impact.
4: 3, 2, 1.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है
2: तुमको लेकर
1: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है
2: मुझे चांद पहले चलो
1: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट से बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
1: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

You know, there's a Japanese legend that says that if you miss the bus, maybe you avoided an accident. If you got rejected, maybe you were saved from the wrong place. If they were left, maybe they made room for who is coming. The universe protects you in ways that look like bad luck at first. Trust the detour. अच्छा सा थॉट है ना नहीं लेकिन सच बताऊं जब लाइफ में कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता है ना उस वक्त ये बातें समझना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है जब रिजेक्शन मिलता है जब कोई रिश्ता टूट जाता है जब कोई प्लान फेल हो जाता है या जब जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां आगे का रास्ता क्लियरली दिखाई नहीं देता तब हम एक ही सवाल पूछते हैं व्हाई मी लेकिन शायद कुछ आंसर्स वक्त के पास होते हैं और शायद कुछ सफर ऐसे होते हैं जहां डेस्टिनेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट डिटोर होता है। हेलो हाय वेलकम नमस्कार जी हाँ डियर मस्ती दिल से शुरू हो चुका है ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मैं हूँ आरजे आंट्रा ऑफ कोर्स ये तो आपको पता चल ही गया होगा और ये जो शो है ना हमने बहुत प्यार और बहुत सोच समझ कर क्यूरेट किया है एक ऐसी सेफ स्पेस बनाने की कोशिश की है जहां आप अपने दिल की कोई भी बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं क्योंकि ऑनेस्टली कभी कभी किसी टोटल स्ट्रेंजर से बात करना आसान लगता है मैं भी ये फील करती हूँ क्योंकि जब हम अपने दिल की बात किसी अपने को बताते हैं कहीं ना कहीं हमेशा एक डर रहता है कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा और कभी कभी जो लोग हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो भी अनजाने में ही सही हमें जज कर बैठते हैं हम सब कभी ना कभी इस सिचुएशन से गुजरे जरूर है इसीलिए ये 3 घंटे ये स्पेस ये कॉन्वर्सेशंस सब आपके नाम यहाँ कोई नेम्स नहीं लिए जाते आपके लिए हम डियर मस्ती और हमारे लिए आप है डियर लिसनर बस इतना सा रिश्ता है बिल्कुल उन लिसनर्स की तरह जो हमें अपनी कहानियां अपनी उलझने अपने दिल की बातें जो हैं यहाँ पर लिखकर भेजते हैं अगर आप भी हमें लिखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं 9158963 पर या फिर किसी भी ईमेल आईडी से हमें ईमेल भेजिए listener@radiomasti.com.sg पर आपकी आइडेंटिटी हमेशा अनोनिमस रखी जाएगी अब वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का ये वाला गाना सुने पीछे मुड़ के नहीं देखना है बस आगे बढ़ते रहना है स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से

0: सिंगापुर
1: बोर्ड हो गेम खेलनी है चैलेंज एक्सेप्ट करोगे
2: एक्साइटेड
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963. 40% off, 40% joy, Lucas.
4: 40% off? Oh my God! Let's go, let's go!
5: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge.
6: Soon, soon, baba, soon, soon, baba, soon, soon, soon.
5: Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.
7: Dear Masti, Dil Se. Because sometimes, radio par baitha ek anjana insaan aapko dunya se zyada samajh leta hai.
8: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. मैं हूं अंतरा और इस वक्त हम तैयार हैं अपनी पहली चिट्ठी के लिए. जी हाँ, ये वही शो है जिसका नाम है डियर मस्ती दिल से, जहां पर हम आपकी चिट्ठियां ही पढ़ते हैं विदाउट टेकिंग योर नेम्स. सो चलिए, हमारे डियर लिसनर ने क्या लिखा है. डियर मस्ती, आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिसको दूसरों के लिए करना बहुत अच्छा लगता है. आई लाइक डूइंग थिंग्स फॉर पीपल. सबको खुश देख कर मुझे बहुत खुशी मिलती है. बट ऑफ लेट आई एम हैविंग दिस अनकंफर्टेबल फीलिंग दैट काफी सारे लोग डिस्पाइट मी ऑलवेज बींग ऑन देयर साइड एंड हेल्पिंग देम आउट, आई थिंक बिहाइंड माई बैक दे मेक फन ऑफ मी. टू बी ऑनेस्ट, मैंने एक्चुअली गलती से ही सुन लिया था एंड आई वॉज एंड स्टिल आई एम हर्ट. What did I do to deserve this kind of reaction? I am good to everyone. Then why? So dear listener, आपका लेटर पढ़ते पढ़ते मुझे एक बात याद आ गई जो मैं खुद को एक टाइम पर यू नो बार बार कहती थी, बिकॉज आई नो वॉट यूर टॉकिंग अबाउट. एंड वो बात ये है कि यू कैन नेवर नेवर नेवर कीप एवरी वन हैप्पी. सच कहूँ, आप नहीं कर सकते. हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरों की खुशी में खुशी मिलती है. आई एम आल्सो वन ऑफ देम. हम हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि वो हमारे नॉर्मल हमारे नेचर जैसे होता है. लेकिन कभी कभी धीरे धीरे हम ये मान बैठते हैं कि अगर हम अच्छे हैं तो लोग भी हमारे साथ हमेशा ही अच्छे होंगे. और जब रियलिटी उससे मैच नहीं करती है तो दिल टूट भी जाता है. और शायद इसीलिए आपका दिल आज आपको वो अनकंफर्टेबल सी फीलिंग दे रहा है, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है. और शायद वो फीलिंग सही भी है. लेकिन एक बात याद रखिए, किसी और का बिहेवियर आपकी वैल्यू का सर्टिफिकेट नहीं होता. कभी कभी लोग किसी की काइंडनेस को अप्रिशिएट करते हैं, कभी कभी उसका एडवांटेज लेते हैं और कभी कभी उसका मजाक भी बना देते हैं. लेकिन उसमें उनका कैरेक्टर ज्यादा दिखाई देता है, आपका नहीं. और शायद अब वक्त आ गया है एक इम्पॉर्टेंट सवाल अपने आप से पूछने का. क्या आप लोगों की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि आपको करना पसंद है, या इसलिए क्योंकि आप उनसे अप्रिसिएशन, लॉयल्टी या एक्सेप्टेंस एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि अगर आप अपनी गुडनेस को लोगों के रिएक्शन से मेजर करेंगे तो बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट आएगी आपके हाथों. लेकिन अगर हम अच्छे यू नो इसलिए हैं क्योंकि ये हमारी चॉइस है, तो फिर किसी और की ओपिनियन हमारी यू नो शांति को भंग नहीं ही कर पाएगी. सो यू थिंक अबाउट इट अ बिट. मैं लौट कर आती हूँ, फिर बात करते हैं कि मैं इस सिचुएशन को किस हिसाब से देखती हूँ और मुझे क्या लगता है कि क्या मैं करती. राइट, तब तक के लिए ये वाला गाना

सके। कभी कभी होता है ना कि हम बिल्कुल भी कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, सिर्फ दूसरों के लिए सोचते रह जाते हैं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आई विल बी राइट बैक ऑन डियर मस्ती। दिल से स्टे ट्यून्ड।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Dear Masti, दिल से, because sometimes radio पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: Welcome back to Dear Masti Dil Se on Radio Masti 24/7 Live. मैं हूं अंतरा यहां पर आपके साथ। So, आज के लेटर में थोड़ी देर पहले जो पढ़ा, हमारे डियर लिसनर ने ये लिखा कि उन्हें दूसरों के लिए करना काफी अच्छा लगता है, लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों को अपने पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते हुए सुना तो वो बहुत हर्ट हुए और उनका सवाल ये था कि मैं सबके साथ अच्छा हूँ तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सो माई डियर लिसनर, अब मेरी बात ना बहुत ही ध्यान से सुनिए। जिंदगी में लोग आपको यूज करेंगे, कई बार करेंगे, कई तरीकों से करेंगे, कुछ मैनिपुलेट शायद करेंगे, कुछ शायद कभी झूठ बोलेंगे, कुछ तब तक साथ रहेंगे जब तक उन्हें आपसे कुछ चाहिए होगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होंगे। और हाँ, जब पहली बार ये सब पता चलता है ना, तो यस, दिल थोड़ा सा नहीं काफी सारा टूट जाता है, क्योंकि आपने उनकी बातों पर यकीन किया था, उनकी इंटेंशंस पर ट्रस्ट किया था, और शायद क्योंकि आप खुद जेन्युइन हैं, आप ये मानकर चलते हैं कि हर कनेक्शन जो आप बनाते हैं वो भी जेन्युइन ही होगा। लेकिन जिंदगी धीरे धीरे एक बहुत ही हार्ड लेसन सिखाती है हमें। हर वो इंसान जो आपकी लाइफ में आता है वो रहने के लिए नहीं आता है। कुछ लोग ना सिर्फ एक लेसन बन के आते हैं, कुछ बाउंड्रीज सिखाने के लिए आते हैं, कुछ आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आते हैं, और कुछ आपको ये डिफरेंस समझाने के लिए आते हैं कि किसी को आपकी जरूरत होना और किसी का आपकी वैल्यू करना दोनों अलग बातें हैं। लेकिन अब जो मैं कहने जा रही हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट बी बिटर, राइट? दुनिया ने अगर आपको हर्ट किया है तो आपकी काइंडनेस को यू नो यू जस्ट कैन नॉट पनिश दैट। अच्छा इंसान रहना अच्छी बात है, बस थोड़ा वाइजर बनना पड़ेगा। थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा फिल्टर कीजिए, थोड़ा नहीं काफी सारा फिल्टर कीजिए, और थोड़ी नहीं काफी सारी बाउंड्रीज भी लगाइए जितनी आपकी जरूरत है, क्योंकि बाउंड्रीज वॉल नहीं होती है, ये मैं सबसे कहती हूँ। बाउंड्रीज आर डोर्स, राइट? वो डिसाइड करती है कि आपकी लाइफ में कौन एंटर करेगा और कितनी देर के लिए। आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये सीखने की जरूरत है कि हर किसी को अपनी एनर्जी, अपना टाइम और अपना दिल देना जरूरी नहीं होता है। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन आप लोगों को क्लियरली देखना सीख जाएंगे, उस दिन लोग आपको यूज करने की पावर भी खो बैठेंगे, और फिर आप रियलाइज करोगे कि

सबको खुश करने की कभी भी कोई जरूरत ही नहीं। जो सच में आपको वैल्यू करते हैं वो आपको वैसे ही पसंद करेंगे जैसे आप हैं। आई होप दिस हेल्प्स। और अगर आप इस तरह से हमें लिखना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखिए 9151893 पर या फिर listener@radiomasti.com.sg पर। फिलहाल के लिए चलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक की ओर ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: स्वागत है आपका रेडियो मस्ती 24/7 पर। जी हाँ, इस समय मेरी बारी आ चुकी है और जैसा कि आप जानते हैं हमारे डियर मस्ती दिल से शो में एक नहीं दो नहीं तीन तीन जॉक्स एट योर सर्विस। डियर मस्ती दिल से, तो चलिए मेरी चिट्ठी जो है बड़ी ही खास है। मैं हमेशा ही हर चिट्ठी के लिए बोलती हूँ ये बात, लेकिन आज तो वाकई ये चिट्ठी दिल को बहुत बहुत करीब से लग गई है। हाय डियर मस्ती दिल से, माय ब्रदर एंड आई बोथ लिव ओवरसीज अपनी फैमिलीज के साथ में। आवर फादर पास्ड अवे लास्ट ईयर एंड सिंस देन लाइफ हैज बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर आवर मदर। कुछ समय के लिए वो मेरे भाई के पास यूके चली गई, बट अनफॉर्चुनेटली शी सफर्ड एन इंजरी देयर एंड नेवर रियली सेटल्ड इनटू लाइफ अब्रॉड। शी मिस्ड इंडिया, हर रूटीन, हर सराउंडिंग्स एंड इवेंचुअली डिसाइडेड टू रिटर्न होम। उनकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन जब से वापस आई हैं वी हैव डन एवरीथिंग वी कैन थिंक ऑफ। उनके पास दो हेल्पर्स हैं, पूरे दिन पूरी रात माई ब्रदर एंड आई कॉल हर एवरी सिंगल डे विदाउट फेल। वन ऑफ अस और आर फैमिली मेम्बर्स विजिट्स एवरी फ्यू मंथ्स। फाइनेंशियली वी इंश्योर शी हैज एवरीथिंग शी नीड्स। The problem is that she seems to be becoming more withdrawn, unhappy, increasingly difficult to manage. Recently, उन्होंने खाना भी कम कर दिया है. In fact, कभी-कभी she totally refuses to eat. Every suggestion is met with resistance. Every solution seems to create another problem. What hurts the most is that several of our own siblings, her own siblings, live nearby, yet very few people actually visit her. Most of the emotional responsibility falls on us, even though we are thousands of kilometers away. We feel trapped. I cannot simply leave my job and move back to India. My own family depends on me. At the same time, I feel guilty every day, wondering whether I'm failing my mother. And before anyone says just talk to her, we have repeatedly for months. She refuses help, rejects suggestions, and has become extremely unreasonable. What do children do when they genuinely want to help a parent, but nothing they do seems to be enough? I can actually understand exactly aapka ek ek word. थैंक यू सो मच, आपने ये बात लिखी है क्योंकि मेरी खुद की जान पहचान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। वेल, नॉट एवरी मदर और एवरी पेरेंट कुड बी एज चैलेंजिंग टू मैनेज जैसे कि आपने इस टाइम मेंशन किया है, लेकिन डेफिनेटली हर किसी का अपना अपना एक चैलेंज चल रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, वापस आके लेट्स ट्राई एंड लुक इन टू योर इश्यू एंड योर लेटर, क्योंकि आई एम श्योर कहीं ना कहीं हम जब बात करेंगे तो आपको शायद कुछ तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये करके देखता हूँ। स्टे ट्यून्ड।
1: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere anytime.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सिंगापुर प्रिपेयर फॉर इंपैक्ट।
3: 3, 2, 1।
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Lion Challenge. City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

वेलकम बैक. रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है आपका शो. नो फिल्टर्स, नो जजमेंट, जस्ट योर लेटर्स. डियर मस्ती, दिल से. और मैं रेणुका आपके साथ. पढ़ी जा रही हैं आप ही की चिट्ठियाँ. जी हाँ, और कोशिश कर रहे हैं कि हम आपकी बात को समझें. और कहीं ना कहीं जहाँ आप थोड़े से शायद स्टक हो गए हैं, अपने माइंड में मेंटल ब्लॉक सा हो गया है आपके पास, तो हो सकता है कोई ना कोई मिलके रास्ता निकाल पाएं आपकी परेशानी का. सो वेल, कुछ समय पहले, इस ब्रेक से पहले हमने बात करी थी अबाउट दिस लेटर फ्रॉम अ सन हु लिव्स ओवरसीज, हिज ब्रदर लिव्स ओवरसीज, एंड द मदर इज गेटिंग इंक्रीजिंगली मोर चैलेंजिंग टू मैनेज. वो इंडिया में है और ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं. ऑल्दो उनकी बातों से लग रहा है दे हैव डन एब्सोल्युटली एवरीथिंग टू मेक श्योर कि इनके फादर के जाने के बाद में इनकी माँ की जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल बेहतरीन हर तरह से बनाई जाए. वेल डियर राइटर, दिस लेटर विल रेजोनेट विद मैनी लिसनर्स, जैसा मैंने कहा, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा फैमिलीज जो हैं आज के दिन में अक्रॉस कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स रह रही हैं. द फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू से टू यू इज प्लीज़ स्टॉप कैरिंग द बिलीफ दैट यू आर नॉट डूइंग इनफ. आप और अपने आपके जो भाई हैं जो रोज़ मम्मी को फ़ोन करते हैं, आपने उनके केयर के लिए 24/7 हेल्पर्स अरेंज करे हैं, यू विजिट रेगुलरली, यू आर फाइनेंशियली सपोर्टिंग हर, ये एक्शंस जो है ना, ये अनकेयरिंग बच्चों के एक्शंस नहीं होते. पर कभी कभी आफ्टर लूजिंग अ स्पाउस, एक एल्डरली पेरेंट जो है ना, दे आर एक्सपीरियंसिंग अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, या कह लीजिए वो ग्रीफ है, लोनलीनेस है, लॉस ऑफ पर्पस है, एंड द फीलिंग दैट लाइफ हैज चेंज्ड फॉरएवर. अनफॉर्चुनेटली कोई भी हेल्पर्स, पैसा, फोन कॉल्स, उसको फुली रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि कंपेनियनशिप और इमोशनल कनेक्शन को कुछ भी जिंदगी में रिप्लेस नहीं कर सकता. पर अब जब शी हैज स्टॉप्ड ईटिंग और रिड्यूसिंग दैट और नॉट गेटिंग ऑफ हर बेड, विड्रॉइंग फ्रॉम लाइफ और बिकमिंग इंक्रीजिंगली नेगेटिव, स्पेशली जब उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, तो शायद सिर्फ वो स्टबर्ननेस नहीं है, इट कुड बी डिप्रेशन, अनरिजॉल्व्ड ग्रीफ और इवन एन एज रिलेटेड मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट रिक्वायर्स प्रोफेशनल असेसमेंट. इसीलिए ये मत पूछिए कि हम उसे कन्विंस कैसे करें, ये पूछिए डज शी नीड प्रोफेशनल सपोर्ट, जेराइट्रिक स्पेशलिस्ट, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, या मे बी अ डॉक्टर. जो फैमिली मेंबर्स नहीं देख सकते, शायद वो देख के बता दें. सो स्टॉप ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस अलोन. सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, ओल्ड फ्रेंड्स, रिलीजियस ग्रुप्स, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सीनियर सिटीजन ग्रुप्स अवेलेबल हों आसपास, तो दिस इज द टाइम टू एक्टिवेट एवरी पॉसिबल सपोर्ट नेटवर्क. एक मीनिंगफुल वीकली विजिटर दैट कैन मेक अ डिफरेंस. And finally, there comes a point जब adult children must accept कि वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. आप provide कर सकते हैं care, you can provide support, love, opportunities, but आप दूसरे इंसान की ज़िंदगी नहीं जी सकते उनके लिए. Sometimes the greatest act of love is knowing you have done your best, even when the outcome is not perfect. So to every son and daughter listening from overseas today, caring for aging parents from a distance is one of the hardest emotional journeys there is. Be compassionate towards them, but apni taraf bhi. Ye hai Dear Masti Dil Se, jahan kabhi kabhi heaviest burdens bhi bade quietly carry kiye jaate hain. हमसे शेयर कीजिए info@radiomasti.com.sg पर, या बेहतर है 9151896 पर.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: ऐसा होता है, आपको जो करने को मना किया जाए आपका दिल वही करने को कहता है। दिल क्या, दिमाग का भी ऐसा ही है। चलिए ऑन दिस नोट कि नेगेटिव थॉट्स पर कैसे अपना कमांड रखें, मैं आरजे नुपुर डियर मस्ती दिल से शो पर आपके साथ। हम पूरी दुनिया से नहीं जीत सकते अगर हम अपने थॉट्स से नहीं जीत पा रहे हैं। जो हमें नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, कुछ भी हो जाए बस नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि यार मेरे दिल पर और दिमाग पे कंट्रोल नहीं है। चलिए डियर मस्ती दिल से शो पर मेरे हाथों में जो लेटर आया है उसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है मुझे। हाँ, जिन्होंने ये लेटर भेजा है उन्होंने लिखा है कि हाय डियर मस्ती दिल से, मुझे ना एक थोड़ी सी गलत आदत लग चुकी है। मैं अपनी लाइफ में अकेली हूँ, लेकिन मैं ना हमेशा मैरिड मेल मेंबर्स के ऊपर लट्टू हो जाती हूँ। मतलब मुझे अट्रैक्शन हमेशा मैरिड लड़कों की तरफ ही फील होता है। सो मुझे क्या करना चाहिए? आपको खुद भी पता है कि आप थोड़ा गलत सोच रही हैं, है ना? तो एथिकली गलत सोचना गलत नहीं है, एथिकली अपनी सोच पर कंट्रोल ना रखना थोड़ा सा गलत हो सकता है। आज शायद आप मैरिड लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, इसलिए आपको अपना रियल पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, राइट? कल आप शायद कुछ गलत कामों की तरफ अट्रैक्ट हो जाओगी और वो आप करती रहोगी तो आपको लगेगा कि यार अब इन चीजों से कैसे निकलूं। तो ये एक हैबिट का पार्ट बन सकता है कि जो चीज नहीं करनी है आपका दिल वही करने को बार बार कहता है। तो आपको खुद को एक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अपने माइंड को, अपने दिल को एक कमांड देना पड़ेगा, और आपको अपने कुछ गाइडलाइंस, अपनी रूल्स बनाने होंगे ताकि आप अपने सोच विचार, अपना एक जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है ना, वो उसी के अराउंड रखो, ठीक है? सो डोंट डिस्ट्रैक्ट सो इजीली। आप जैसे ही अपने माइंड को, अपने दिल को कमांड देना शुरू करोगे ना, तो विद इन 3 to 6 months आप शायद इन सारी चीजों से निकलकर एक अलग डायरेक्शन में निकल पाओ। एनीवेज, आपकी डायरेक्शन

0: सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू जी जी मार्ट ऑनलाइन .com, ग्रोसरी एड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सिंगापुर, बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड?
3: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: ये वन साइडेड मोहब्बत ना टू साइडेड मोहब्बत से ज्यादा दुखदायी होती है, लेकिन जब प्यार इंसान से नहीं मशीन से हो जाए तो क्या करें? आ आ आ, ये कोई फिल्मी किस्सा नहीं है, बिल्कुल डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुरा आपके साथ। यू नो व्हाट, टेक्नोलॉजी शायद हमारे भले के लिए बनाई गई है, हमारा काम आसान करने के लिए बनाई गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टेक फ्रेंडली होने से ज्यादा हम टेक के दुश्मन बनते जा रहे हैं, है ना। एंड अभी जिनका लेटर मेरे हाथों में आया है उन्होंने पता है क्या लिखा है? डियर मस्ती दिल से, हाय, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहूंगा, मैं बस इतना कहूंगा कि मुझे ना AI प्लेटफॉर्म पर अपने दिल की बातें लिख लिख कर बताने की आदत हो गई है। मैं AI से बातें करना शुरू कर चुका हूँ और मुझे पता है ये एक मशीन है, पर फिर भी मेरा दिल मानने को ये राजी नहीं है। आ आ आ आ, जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, मैं आपसे कहना चाहूंगी, मैं आपको पर्सनली तो नहीं जानती हूँ, लेकिन क्या आपकी लाइफ में अच्छे वाले दोस्त हैं? हाँ, मतलब वो दोस्त जिनसे कोई भी प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता नहीं होना चाहिए, एकदम प्योर फ्रेंडशिप होनी चाहिए। ऐसे फ्रेंड्स हैं आपकी लाइफ में? नहीं, अगर वो नहीं है ना तो आप अपनी बातें ऐसे ही कहीं लिख लिख कर या चलते फिरते AI टूल्स को और ना जाने किन अनजान लोगों को या कौन सी थेरेपीज में बताना शुरू कर दोगे। हाँ, तो आप पहले अपनी लाइफ में जेन्युइन फ्रेंड्स लेकर आइए जिनके प्रति आपका कोई और इंटेंशन ना हो, और जिस तरह से एक रियल मैन टू मैन बातें होती है ना वो बताना शुरू कीजिए। हेसिटेट मत कीजिए, कोई आपको कितना ही गलत समझे आपके मन में जो चल रहा है वो बताइए, एक्सप्रेस कीजिए। मशीन से एक तरफा बातें कर यानी AI प्लेटफॉर्म से एक तरफा बातें कर आप कितने पानी में हैं आप कभी नहीं जानने वाले। ओके, सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस टुडे। एनीवेज, मैंने स्टार्ट कर दिया है, इस गाने की तरह सोचना।

0: बिल्कुल
1: डियर मस्ती दिल से शो पर
0: गाने और बातें लगातार कर रही है. डोंट गो एनीवेयर.
2: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपैट इंडियंस. एनीटाइम एनीवेयर.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। स्वागत है आपका एक बार और, रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। जी बिल्कुल, और हम बात कर रहे हैं हम अनजाने इंसानों की। यहाँ पर अंतरा है, आरजे नूपुर हैं, और साथ ही साथ में मैं रेणुका आपके साथ हूँ, आप ही की चिट्ठियाँ पढ़ते हुए एंड होपफुली आपको थोड़ा सा एक रास्ता दिखाते हुए। Our next letter is from a lady who is, well, I would say very strong to really look up to us for her problem and sharing what she's going through. Hi dear Masti Dil Se, I'm writing about something many women go through but very few openly talk about. मैं अपने अर्ली 50s में हूँ एंड आई एम गोइंग थ्रू मेनोपॉज। बिफोर दिस फेज आई कंसिडर्ड माई सेल्फ अ फेयरली काम बैलेंस्ड पॉजिटिव पर्सन, बट लेटली आई बेयरली रिकग्नाइज माई सेल्फ। I find myself getting irritated over small things. I snap at my husband, become impatient with people around me, and then later feel guilty about it. Sometimes I feel like I'm constantly on the edge, even when nothing is actually wrong. मेरी नींद बहुत ही खराब हो चुकी है। मैं आधी आधी रात को उठ के बैठ जाती हूँ, कभी इधर कभी उधर मुड़ती हूँ, एंड देन स्पेंड द नेक्स्ट डे फीलिंग एग्जॉस्टेड। देर आर डेज व्हेन आई डोंट इवन फील मोटिवेटेड टू वर्क और सोशलाइज। आई जस्ट वांट टू बी लेफ्ट अलोन। Another issue is with that my interest in intimacy has reduced significantly. My husband tries to be understanding, but I don't think he truly gets what I'm going through. Sometimes he thinks I'm overreacting, and that only makes me feel more alone. The hardest part is that everyone expects me to continue being the same person I always was. Lekin andar hi andar mujhe aisa lag raha hai, meri body, emotions, energy levels, and even confidence.

0: Students are changing. Am I becoming difficult? Is this normal? How do I stop menopause from affecting my marriage, my work, and my mental health? Well, yet again, for the sake of repeating myself, I know you are not alone. तो एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर और वापस आके बात करते हैं आपके इस चैलेंज के बारे में, जो मैं आपको 100% कह सकती हूँ कि बहुत सारी और भी हमारी लिसनर्स जो हैं उनको इंटरेस्ट होगा सुनने में. स्टे ट्यून्ड.
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर, रेणुका आपके साथ है और आप जानते हैं कि आपका ये खास शो है डियर मस्ती दिल से। डियर मस्ती दिल से, आप ही की चिट्ठियां, आप ही के विचार, समटाइम्स आपकी ऐसी ऐसी बातें जो हमें और लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी हेल्प करती हैं। कहीं ना कहीं एक एडवाइस, एक डायरेक्शन, एक एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ताकि हम आपकी चिट्ठियों को यहां पर किसी और तक पहुंचा सकें और शायद उनकी किसी प्रॉब्लम को, उनकी किसी परेशानी को सॉल्व कर सकें। First of all, to the listener who just wrote this letter about what she's going through, जी हाँ, menopause उन्होंने खुद ही identify करके बोला है, लेकिन उनको अपनी body क्या बन गई है वो ही समझ में नहीं आ रहा, ना mental state समझ आ रहा है, ना उनकी body का reaction समझ आ रहा है, ना mood समझ आ रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। Well, I can tell you, I guarantee there are many women listening right now who are silently nodding their heads as well. Menopause, one of the most common life transitions women experience, yet it remains one of the least openly discussed. And the first thing I want to say is this: what you are experiencing, my dear, is not unusual. Neend ke changes, mood changes, energy, concentration, emotions, aur intimacy, ye sari ki sari cheezein bahut si aurte report karti hain during this phase of life. The problem is that menopause affects not just the body but relationships as well. Partners often see the irritation or withdrawal, but unko samajh mein nahi aata ye physical emotional changes kya ho rahe hain, chal kya raha hai underneath. So instead of trying to push through silently, शायद आपको अपने पार्टनर को एक कॉन्वर्सेशन में लाना जरूरी है, आर्ग्यूमेंट के दौरान नहीं, नॉट ड्यूरिंग अ डिफिकल्ट डे, नॉट आफ्टर यूर अ टायर्ड पर्सन ड्यूरिंग द डे, बट ड्यूरिंग अ काम मोमेंट, जब आप एक्सप्लेन कर सकें दैट इट इजंट अबाउट नॉट लविंग योर पार्टनर, इट्स अबाउट नेविगेटिंग अ मेजर लाइफ ट्रांजिशन टुगेदर। सेकेंडली, प्लीज डोंट सफर अलोन, अपने डॉक्टर से बात कीजिए। मेनी वुमेन अज्यूम दे सिंपली हैव टू टॉलरेट एवरी सिम्टम, बट देयर मे बी लाइफस्टाइल चेंजेस, थेरेपीज, ट्रीटमेंट्स, सपोर्ट ऑप्शंस भी होते हैं अवेलेबल। एंड परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, गिव योरसेल्फ सम ग्रेस। आपने सालों बिता दिए घर का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चे, फैमिली, हर चीज को अच्छे से यू हैव टेकन केयर ऑफ, दिस इज द टाइम व्हेन यू ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, राइट? And believe me, menopause is not the end of who you are. It's a transition into a new chapter. And like every major transition in life, it requires patience, understanding and support. तो अगर आप इमोशनल हैं, टायर्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, रेडियो मस्ती 24/7 तो सुनते ही रहिए, लेकिन इतना जान जाइए, यू नॉट फॉलिंग, यू आर अडैप्टिंग। एंड समटाइम्स द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग अ पर्सन कैन डू इज आस्क फॉर हेल्प इंस्टेड ऑफ प्रिटेंडिंग सब ठीक है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ओके? एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव डन, आस्क्ड फॉर हेल्प। तो हम हैं यहाँ पर, लिखते रहिए हमें, हमारे से जुड़े रहिए, क्योंकि ये है डियर मस्ती दिल से, वेयर वी रिमाइंड ईच अदर दैट सम स्ट्रगल्स आर शेयर्ड बाय मोर पीपल Then we realize.

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन की बात और सी।
1: 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: Thank you to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature wet and non-veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
5: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live. Keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
6: थोड़ी देर पहले ना मैं रेणुका के ये लेटर सुन रही थी और एक बात ना बार बार दिमाग में आ रही थी कि अगर हम सच में अपने आसपास देखें ना तो कितनी बातें हैं जो हम कह के भी नहीं कह पाते हैं. इट वॉज अबाउट मेनोपॉज एंड कितनी फीलिंग्स हैं जो हम बस अंदर ही अंदर रख लेते हैं. नहीं, कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, कभी खुद वल्नरेबल नहीं दिखना चाहते और कभी बस ये डर होता है कि सामने वाला समझेगा भी या नहीं. और शायद इसी सवाल को सोचते सोचते हमने ये शो जो है बिल्कुल बना दिया सिर्फ और सिर्फ आपके लिए. डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. मैं हूं अंतरा यहां पर वापस से आपके साथ और ये एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां पर आप बिना किसी जजमेंट के अपनी बात जो है जजमेंट के डर से अगर आप हेजिटेट करते हैं तो बिल्कुल आप यहां पे बेफिक्र होकर अपनी बात कह सकते हैं. और इवन आपने कभी हमें लेटर अगर नहीं लिखा हुआ है, मुझे यकीन है ये जो आज के और इससे पहले के जितने भी लेटर्स है कहीं ना कहीं आपने किसी सिचुएशन के साथ तो जरूर रिलेट किया होगा, किसी इमोशन को जरूर महसूस किया होगा, किसी स्ट्रगल में आपने यू नो हल्का सा अपना फेंट सा जो है झलक भी देखी हो सकती है. और अगर ऐसा हुआ है तो बस रिमेम्बर इट्स ओके टू फील व्हाट यू फील, ओके, एंड उसे शेयर करना भी बिल्कुल ओके है. हम यहाँ पे आपको सुनने के लिए ही बिल्कुल बैठे हुए हैं. और इसी बात से मुझे याद आया कि आज शो की शुरुआत में मेरे पास एक लेटर आया था, एक लिसनर जो सबको खुश रखना चाहता था, सबके लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन फिर उसे पता चला कि कुछ लोग जो हैं उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ा रहे हैं. और उस लेटर ने मुझे आज का सवाल दिया जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ. अगर आपको पता चले कि कोई आपके पीठ पीछे आपके बारे में बातें कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, लेकिन सामने वो आपसे बहुत अच्छे से मिलता है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसको कन्फ्रंट करेंगे, क्या आप या फिर चुपचाप डिस्टेंस बना लेंगे? या फिर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि और आपने उसे किसी ऐसे तरीके से हैंडल किया हो जिसने आपको काफी पीस ऑफ माइंड दिया? हम सच में आपकी स्टोरीज और पर्सपेक्टिव्स बिल्कुल सुनना चाहेंगे. सो टेल मी अबाउट दिस 9158963 पर. एंड जरूर बताइए कि आप ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करते हो जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं. योर थॉट्स, योर एक्सपीरियंसेस, योर विजडम इज ऑल वेलकम एंड वी आर वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू. 9158963 के दरवाजे बिल्कुल आपके लिए खुले हुए हैं. यह है डियर मस्ती दिल से ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.

0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ, और बिल्कुल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ओवर हियर सीधा बढ़ते हैं हमारे अगले लेटर की ओर और देखते हैं कि हमारे डियर लिसनर ने हमें क्या लिखकर भेजा है। सो डियर मस्ती, माय फ्रेंड टोल्ड मी वन डे दैट इफ यू वांट टू मेक थिंग्स हैपन, आस्क द यूनिवर्स फॉर इट, मैनिफेस्ट इट एंड इट विल कम टू यू। I am embarrassed and awkward yet writing this, but I did ask the universe for good scores in studies, that internship I interviewed for, and a lot of other things, but nothing happened. How did it work for my friend and not for me? Am I doing something wrong? Did I get scammed? Judge me all you want, but tell me what you think about it, okay? Okay. Definitely. So my dear listener, सबसे पहले तो no judgment at all. In fact, I think a lot more people have had this thought than some of, like, I'm proud of you that you openly admitted it as well. लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि लाइफ आपके साथ lately कैसी रही है? या आपने बहुत मेहनत की है हाल ही में और रिजल्ट वाइज वैसा नहीं आया जैसे आपने सोचा था? क्या आपने वेट किया और अपॉर्चुनिटीज आपके पास नहीं आई? क्योंकि कभी कभी लाइफ में जब हमारे हिसाब से नहीं चीजें चलती हैं तो हम नेचुरली उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो हमें थोड़ी सी भी होप देती है, और होप में कोई बुराई नहीं है। मुझे मेरे डैड हमेशा एक बात कहते थे एंड आई कंप्लीटली अग्री विद हिम, मैं लाइक लाइफ के प्रिंसिपल्स में दैट इज देयर डेफिनेटली, दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। और आज भी मुझे लगता है कि उस लाइन में बहुत सच्चाई है। वैसे अगर आपने कभी ये मूवी द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस देखी है, और नहीं भी देखी है तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो आई वुड सजेस्ट एंड रिकमेंड कि उसको वापस से देखिए। उस फिल्म का एक बहुत ही पावरफुल डायलॉग है, लेट मी प्ले दैट फॉर यू फर्स्ट।
1: वन डे अ मैन वाज ड्राउनिंग इन द वाटर एंड अ बुक केम बाय एंड सेड यू नीड एनी हेल्प, ही सेड नो थैंक यू, गॉड विल सेव मी। एंड अनदर बुक केम बाय सेड यू नीड एनी हेल्प, ही सेड नो थैंक यू, गॉड विल सेव मी। Then he drowned and went to heaven. And he said, God, why didn't you save me? And God said, I sent you two big boats, you know me. Do you like it?
2: Yes.
0: समझ में आया? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि मैनिफेस्टेशन सही है या गलत है, मैं बस इतना कह रही हूँ कि सिर्फ यूनिवर्स को ऑर्डर देने से चीजें मैजिकली डिलीवर नहीं हो जाती है। मैनिफेस्टेशन अगर किसी काम की है तो शायद इसलिए कि वो आपको अपना गोल क्लियरली देखना सिखाती है, लेकिन उस गोल तक चल कर तो आपको ही जाना पड़ेगा। हम बहुत बार परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का ना वेट करते रहते हैं कि परफेक्ट टाइमिंग होना चाहिए, परफेक्ट कॉन्फिडेंस, परफेक्ट कंडीशंस, और उस वेट में कभी कभी ना अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही निकल जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। सी, फियर इज नॉर्मल, एप्रिहेंशन इज ऑल्सो नॉर्मल, फेथ रखना भी बहुत अच्छी बात है, चाहे भगवान में हो, यूनिवर्स में हो, बट खुद में जरूर होना चाहिए। लेकिन फेथ के साथ एफर्ट भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, एक्शन भी जरूरी है और लीप ऑफ फेथ भी जरूरी है। मैं हमेशा एक बात मानती हूँ, दैट फॉर एनीथिंग टू वर्क आउट यू हैव टू वर्क फॉर इट। और काफी बार बहुत हार्ड वर्क के बाद भी जब रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन वो मेहनत जो है कभी वेस्ट नहीं जाती, वो आपको बेटर, स्ट्रॉन्गर एंड स्मार्टर बनाती है। तो आप अपने आप पर भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए, और अगर कभी फिर ऐसे थॉट्स आए तो हमें लिखिए या अपने पेरेंट्स, टीचर्स या किसी ट्रस्टेड अडल्ट से जो है बात कीजिए। हेल्प मांगने में कोई शर्म नहीं होती, कभी कभी वही सबसे ज्यादा करेजियस स्टेप होता है। सो होप दिस हेल्प्स डियर लिसनर। आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से।
3: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
0: Alright, so well, बहुत बहुत वापस से स्वागत है आपका ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं आंत्रा यहाँ पर आपके साथ चल रहा है डियर मस्ती दिल से, और बस इसी बात के साथ इस सेफ स्पेस पे कोई और है जो अपना दिल खोल के हमारे सामने रखना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। सो है वी गो डियर मस्ती। Recently, I was on a date and it was my first time, sort of a blind date arranged by our friends. While leaving the restaurant, after having a good time, when I asked her to split the bill in half, she lost her cool and judged me for not being a gentleman. May I ask, what do girls want? ये तो सभी का सवाल है। You want equality, but only where you think it is required. Okay. Isn't it supposed to be everywhere? We both are college students. Was I wrong to ask her to do so? I am a little frustrated with this, and I can actually आपका letter में जैसे-जैसे पढ़ रही थी ना, so I can just completely get like you are frustrated. So let me get on to it, okay, my dear listener. सबसे पहले मुझे लगता है कि आपका frustration बिल्कुल लेकर कम है और उस जजमेंट को लेकर ज्यादा है, क्योंकि जब कोई हमें एक ही इंसिडेंट पर जज कर देता है तो नेचुरली यू नो बुरा लगता है। अब आपका सवाल कि क्या आप गलत थे, ऑनेस्टली नहीं। क्या वो गलत थी? जरूरी नहीं, और शायद यहीं से बात काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सी, डेटिंग में बहुत सारी चीजें राइट और रॉन्ग की कैटेगरी में नहीं आती हैं, वो एक्सपेक्टेशंस की कैटेगरी में आती हैं। हो सकता है आपके लिए स्प्लिटिंग द बिल कंप्लीटली नॉर्मल हो, स्पेशली जब दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, राइट? और हो सकता है उसके लिए फर्स्ट डेट पर बिल पे करना एक जेस्चर हो जो वो अप्रिशिएट करती हो। प्रॉब्लम बिल नहीं है, प्रॉब्लम इज कि आप दोनों की एक्सपेक्टेशंस जो है वो डिफरेंट थी, और किसी ने पहले उसके बारे में बात ही नहीं की। अब जो लाइन आपने बोली, What do girls want? Out of frustration थी, I know. मैं उसे थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ, क्योंकि सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती है और सारे लड़के भी एक जैसे नहीं होते हैं। इन दैट केस कुछ लड़कियां जो है बिल स्प्लिट करना प्रेफर करती हैं, कुछ ऑल्टरनेट प्लेइंग जो है वो पसंद करती हैं, कुछ अप्रिशिएट करती है जब सामने वाला पे करे, और कुछ इंसिस्ट करती है कि वो खुद पे करे पूरा का पूरा। हर इंसान अलग है, और डेटिंग का एक बड़ा पार्ट यही डिस्कवर करना होता है कि सामने वाले की वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस आपसे मैच करती है या नहीं। एंड माय डियर लिसनर, एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर एक छोटी सी डिसएग्रीमेंट के बाद आप दोनों एक दूसरे को समझने की जगह जज करने लगे हैं, तो इट वॉज नेवर द बिल विच वॉज द प्रॉब्लम। कंपैटिबिलिटी भी एक एस्पेक्ट है, और उसमें कोई बुराई नहीं है। हर डेट रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं होती है, हर कनेक्शन फ्यूचर तक नहीं जाता है, एंड ऑनेस्टली ये अच्छी बात है। इसी प्रोसेस में तो हमें ये पता चलता है कि हम किस तरह के इंसान के साथ कंफर्टेबल है, राइट? तो इस इंसिडेंट को रिजेक्शन या फेलियर मत समझिए। आपने अपने बारे में कुछ सीखा, और शायद उसने भी अपने बारे में कुछ सीखा, एंड ट्रस्ट मी, जब आपको वो राइट पर्सन मिलेगा ना, तो बिल से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो कॉन्वर्सेशन होगी। कौन पे कर रहा है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं या नहीं। और वैसे भी आप ना काफी यंग हो, ये मुझे ऐसा मेरे को लगा आप ये चिट्ठी पढ़ के, बिकॉज यू आर इन कॉलेज, और मुझे लगता है कि यूथ की यही सबसे ब्यूटीफुल बात होती है। आपको अभी बहुत लोग मिलने हैं, बहुत एक्सपीरियंसेस होने हैं, और बहुत कुछ सीखना है। तो एक ऑकवर्ड डेट को लाइफ का फाइनल वर्डिक्ट मत बनाइए। स्माइल करिए, कुछ सीखिए, अगली कॉफी डेट के लिए रेडी रहिए। हु नोस, द नेक्स्ट स्टोरी माइट बी अ लॉट लॉट बेटर, राइट? इसने देखा है। होप दिस हेल्प्स। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, यह है दिया मस्ती दिल से।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
5: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड
6: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
7: You know what? हमारी गाड़ी में भी एक स्पेयर टायर होता है कि जब गाड़ी जो है ना थोड़ी सी बिगड़ जाए, किसी एक्स्ट्रा टायर की जरूरत हो, उस दिन हम उसे स्टेपनी की तरह लगाए। तो लाइफ में भी ना हर वक्त एक तीसरा चौथा पांचवा टायर लेके मत चलिए। जब बहुत जरूरत हो ना तो उस टायर को इंट्रोड्यूस कीजिए ताकि वो आपको एक थर्ड ओपिनियन दे पाए। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ है एंड डेफिनेटली हम सभी आरजेस कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ की जो गाड़ी है ना, रिलेशनशिप की स्पेशली, वो एकदम सीधी ट्रैक पर चलती जाए। तो अभी मेरे हाथों में जो लेटर है उससे मुझे कुछ नजर आ रहा है कि भाई दिक्कत तो है, बिल्कुल दिक्कत है। और जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है उन्होंने लिखा है कि मेरी पार्टनर वैसे तो बहुत अच्छी है लेकिन वो हर फैसले में अपनी फैमिली का ओपिनियन जरूर लेती है और समटाइम्स क्लैशेस बढ़ जाते हैं कि हम दोनों के बीच की बातों में फैमिली के डिसीजन क्यों निकल कर आ रहे हैं और ये चीज मुझे बहुत इरिटेट करती है। तो मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज वो लोग इतने क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं कि उनके लिए मैं कुछ ज्यादा कह भी नहीं सकता। आपसे कहना चाहूंगी कि आप सबसे पहले अपनी पार्टनर से डिस्कस कीजिए कि अगर यही चीज आप करने लगो, आप बातों बातों में अपने फैमिली मेंबर्स से सारे डिसीजंस, सारे जो वो राइट्स हैं वो उनको देने लगो तो उनको कैसा लगेगा। बट हाँ, आप दोनों से भी जिन बातों का सलूशन ना निकले तब घर के बड़ों की, तब घर के फैमिली मेंबर्स की एक एडवाइस होनी बहुत जरूरी है और वो भी बहुत कैजुअली कि आप सबको डिनर पे लेके गए और वहाँ आपने एक सवाल थ्रो किया और उनकी तरफ से एक जवाब निकल कर आया। तो मेक इट थोड़ा सा लाइट मोड है ना, हर बार आदत बन जाना और आपका मन में ये रख जाना कि ये तो गलत हो रहा है, ये भी गलत है। आप उनसे डिस्कस कीजिए कि ऐसे थर्ड एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। पॉलिटिक्स में भी इसमें बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं। रिश्ता पुराना ही सही लेकिन संभालना आप

0: क्या आप अपनी लाइफ एंजॉय करना भूल चुके हो? आफ्टर स्कूल, आफ्टर कॉलेज, आपको बस और बस काम ही नजर आता है, हाँ? पुरानी लाइफ को याद कीजिए, पुराने नंबर्स को कॉल बैक कीजिए। सो हेलो, हाय डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। एंड यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि हम ना अपनी वर्किंग लाइफ को इतना सीरियस ले लेते हैं कि हम अपने स्कूल, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को पीछे भूल जाते हैं। कई बार वो हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे टेक्स्ट भी करते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम है मजाल कि हम उन्हें कॉल बैक कर दें, हम उनके सवाल के जवाब दे दें, हम उन्हें मैसेज बैक कर दें? नहीं। लेकिन अचानक से आप अकेला फील करते हैं, उस दिन आपको वो पुराने सारे दिन याद आते हैं और होती है मन में एक रिग्रेट कि मैंने अपने दोस्तों को पीछे क्यों छोड़ दिया। चलिए ठीक है, वो कहते हैं ना, सही वक्त आज से ज्यादा सही कोई और हो ही नहीं सकता। आप सच में बैक ऑफ द माइंड अगर किसी अपने पुराने से पुराने फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा मिस करते हैं और आप उनसे सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जुड़े हुए हैं या आपके पास उनका नंबर है, तो उन्हें पिंग कीजिए, उन्हें मैसेज कीजिए और कुछ पुराने मोमेंट्स को चेरिश कीजिए, वरना ये काम तो कभी खत्म नहीं होने वाला। ना ना ना ना ना ना ना। सो मेरी एडवाइस है कि आप चाहे उम्र में जितने बड़े हो जाए, दिल को बच्चा रखिए।
1: कोई नई दुनिया के नए रंगों में खुश रहता है।
0: बिल्कुल, यादें तो साथ हैं लेकिन ताजे गाने भी डियर मस्ती दिल से शो पर आपके साथ हैं।

0: Singapore, prepared for impact.
1: 3, 2, 1.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: Dear Musti, Dil se. Because sometimes radio par baitha ek anjana insaan aapko duniya se zyada samajh leta hai. And with that, we come to the end of another episode of Dear Musti, Dil se. No filters, no judgment, just your letters. Dear Musti, Dil se.
4: ऑलराइट, आज का शो भी व्हाट अ जर्नी, राइट? हमने बात करी अबाउट द चैलेंजेस ऑफ मेनोपॉज, हाउ डीपली इट कैन अफेक्ट इमोशंस, रिलेशनशिप, स्लीप, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ आइडेंटिटी. हमने डिस्कस करे द डिफिकल्ट रियलिटी ऑफ केयरिंग फॉर एजिंग पेरेंट्स फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे एंड द गिल्ट मेनी चिल्ड्रन कैरी व्हेन दे फील दे कैन नॉट डू इनफ. खास बात यह है कि हम इसे प्रीच नहीं कर रहे हैं, ये वाकई रोजमर्रा की जिंदगी में आप ही लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, आप ही लोगों के चैलेंजेस हैं जो आप हमारे साथ शेयर करते हैं और फिर हम इकट्ठा मिलके एक डायरेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं. वी टच्ड ऑन फैमिली इंटरफेरेंस इन रिलेशनशिप्स, अट्रैक्शन टुवर्ड्स समवन हु इज ऑलरेडी कमिटेड एल्सवेयर एंड द ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एक ऐसी दुनिया में जहाँ टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइव्स. अलग अलग सवाल, अलग अलग सिचुएशंस एंड डिफरेंट पीपल एज वेल, येट ऑल कनेक्टेड बाय वन सिंपल ट्रूथ, लाइफ रेयरली कम्स विद अ मैनुअल. और आज ये शो इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि हम सबके पास सारे जवाब नहीं है, बट समटाइम्स वी जस्ट नीड समवन टू हियर अस आउट, क्योंकि किसी और का पर्सपेक्टिव भी बहुत मायने रखता है और हमारी अपनी सिचुएशन को देखने में कितनी मदद करता है, जस्ट इन अ डिफरेंट वे. वन ऑफ द मोस्ट हार्टनिंग थिंग्स फॉर अस रिसेंटली, बाय द वे गाइज, हैज बीन दैट द मैसेजेस वी बीन रिसीविंग फ्रॉम लिसनर्स, जिन्होंने वाकई हमारे कुछ सजेशंस को ट्राई किया है जो हमने डिस्कस करे ऑन द शो, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस, हेल्दियर बाउंड्रीज, रिकनेक्शन विद फैमिली मेम्बर्स, कभी कभी मतलब एक अलग नजरिया मिलने की वजह से आपने कहा है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं. सो प्लीज कीप दोज अपडेट्स कमिंग, बिकॉज We don't want credit. It's just that आपका जब फीडबैक मिलता है ना, तो हमें एक अलग ही डायरेक्शन मिलती है. हमें भी समझ आता है कि क्या रेजोनेट हो रहा है, what helps and what where we can continue to help and serve the community better. और हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए ना भाई. So if there's anything up your mind, guys, a question you can't answer, ask elsewhere, a challenge you are facing, or even a success story that began with a conversation here, please write to us. Because sometimes, ek chitti, ji haan, it can help thousands of listeners feel less alone. When we meet again next Tuesday, take care of your mind, your heart, your relationships, and most importantly, be a little kinder to yourself, okay? This is Renuka signing off from Dear Musti Dil Se, only on Radio Musti 24/7. और ये एक ऐसा शो है जहाँ हर कहानी मैटर करती है, every emotion has a place, and every conversation begins from the heart. क्योंकि कहते हैं ना, कभी कभी रेडियो पर बैठा वो अनजाना इंसान आपको अपने आसपास के लोगों से बेहतर समझ लेता है. Have a fantastic rest of the evening. Bye for now.

आकाश का सोना मंदिर।

0: कभी कभी कि जैसे तुझको बनाया गया मेरे लिए,
1: झूठ बोलते हैं मेरे ख्याल,
0: कि जैसे तुझको बनाया गया

I would like to thank Mirchi Awards for giving me this opportunity. हर कंपोजर का एक ड्रीम होता है. मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं अपने देश के साउंड्स को लेके कुछ करूं. और मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे ये मौका मिला कि मैं अपने देश के म्यूज़िक को एक साथ इकट्ठे बाइंड करके एक स्टेज पे लाऊं. एंड इट वुडन्ट हैव बीन पॉसिबल विदाउट दिस अमेजिंग आर्टिस्ट्स ऑन स्टेज. एंड दिस इज साउंड ऑफ आवर नेशन. This is what makes me love my zindagi. So on that note, ladies and gentlemen.

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: करेंगे यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: सपनों को पूरा करने के लिए जोश, जुनून और आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी होता है। हर दिन उगने वाला सूरज अपने साथ एक नई उम्मीद और अवसर लेकर आता है, इसलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देनी चाहिए, क्योंकि सपने भी उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, जो अपने सपनों को बिंदास मस्ती में जीते हैं। इसलिए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव सुनने वाले तमाम लिसनर्स को समर का प्यार भरा आदाब, नमस्कार। कैसे हैं आप? यादों का एक कारवां लेकर हम चले हैं और आज हम आ पहुंचे हैं 1997 की एक फिल्म का जिक्र करूंगा और उसके बाद इस साल के अंत तक जाएंगे और इसके अलावा अगले साल की भी बात करेंगे। तो 1997 में एक फिल्म आई जो बहुत ही बेहतरीन संदेशा लेकर आई, आप समझ गए कौन सी थी? जी वो फिल्म थी जेपी दत्ता के डायरेक्शन में बनी फिल्म बॉर्डर। 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध पर बनी फिल्म में सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, पूजा भट्ट, राखी, जैकी श्रॉफ, पुनीत इस्सर, कुलभूषण खरबंदा जैसे दिग्गज कलाकारों ने अपने अभिनय के जलवे दिखाए। मल्टी स्टारर फिल्म थी ये। अनु मलिक के संगीत और जावेद अख्तर के लिखे गानों से सजी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। देशभक्ति पर बेस्ड इस फिल्म के गानों में सैनिकों ने अपने परिवार वालों के लिए छुपे हुए प्यार और चाहत को जिस तरीके से पेश किया है वो लाजवाब है। मैं बात कर रहा हूँ संदेश से आते हैं गाने की। अच्छा, इसी फिल्म का एक और गाना था, हमें जब से मोहब्बत हो गई है, ओए होए। सोनू निगम और अलका याग्निक ने जिस खूबसूरती से गाया है इसे, वो सीधे दिल को छू जाता है। वही एक और दूसरा गाना था, तो चलूं ऐ जाते हुए लम्हों। रूप कुमार राठौड़ साहब ने जावेद अख्तर के बोलों को इस खूबसूरती से गाया कि दिल ने कहा है वक्त जरा रुक जा, ठहर जा। और इस फिल्म के बाद अनु मलिक जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर्स में शामिल हो गए थे। अनु मलिक के फादर सरदार मलिक ने उन्हें बुलाया और कहा कि यार मैंने तुम्हारा वो गाना सुना संदेशे आते हैं और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें म्यूजिक बनाना आता है। अनु मलिक अपने पिताजी के इस कॉम्प्लीमेंट को सबसे बड़ा अवार्ड मानते हैं। वो कहते हैं कि वो कभी मेरे काम की तारीफ नहीं करते थे, लेकिन इस गाने के लिए उन्होंने तारीफ की और इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए दुनिया में कुछ और हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा अवार्ड कोई और नहीं हो सकता। फिल्म बेहद कमाल की है। सनी देओल अपने उसी चिर परिचित अंदाज में चिल्ला चिल्ला कर डायलॉग बोल रहे हैं, ललकार रहे हैं दुश्मन को, और उनकी ललकार वाकई बहुत रियल लगती है, जोश भर देती है। जब ये फिल्म मैं देख रहा था तो मेरी मुट्ठी ऐसे भिंच गई थी और देशभक्ति अंदर से ऐसे उबाल खा रही थी। आपके साथ क्या हो रहा था जब आप ये फिल्म देख रहे थे, बताइएगा मुझे। हालांकि इस फिल्म के साथ एक ट्रेजेडी भी जुड़ी हुई है, आपको तो पता ही होगा, दिल्ली के उपहार सिनेमा हॉल में आग लग गई थी और बहुत सारे लोग इसी फिल्म के शो के दौरान मारे गए थे। वो एक अलग बात है, वो त्रासदी कभी भूली नहीं जा सकती, लेकिन इस फिल्म को भी नहीं भूला जा सकता। जिसने भी इस फिल्म को देखा वो हमेशा के लिए इस फिल्म का मुरीद हो गया, फैन हो गया। तो एक काम करते हैं, इस फिल्म का ये गाना सुन लेते हैं और फिर आपसे मुलाकात कर लेता हूँ, क्या कहते हैं, सफर को आगे बढ़ाएं। सुनते रहिए यादों का कारवां विद समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: 40% off. 40% Joy Alukas.
1: 40% off? Oh my God! Let's go! Let's go!
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Soon, soon, baba, soon, soon, baba, soon, soon, soon. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
3: 3, 2, 1.
4: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
0: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
5: वेलकम बैक। यादों का कारवां लेकर एक बार फिर से हाजिर है समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। आज यादों का कारवां गुजर रहा है 1997 के साल से। इसी साल वो फिल्म आई जिसका सभी को बहुत इंतजार था और वो फिल्म थी दिल तो पागल है। यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी बेहतरीन फिल्म जिसने उस साल के तमाम बड़े फिल्म अवार्ड्स अपने नाम कर लिए थे। इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, माधुरी दीक्षित को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, करिश्मा कपूर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म भी यश चोपड़ा को इसी फिल्म के लिए मिला। इसके अलावा इस फिल्म के बेस्ट डायलॉग्स के लिए आदित्य चोपड़ा को अवार्ड मिला और कमाल की बात तो यह है कि करिश्मा कपूर को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का भी मिला इसी फिल्म के लिए। और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड कैसे किसी और के पास जा सकता था। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर उत्तम सिंह को मिला ये अवार्ड फिल्म फेयर का। आनंद बख्शी ने क्या कमाल के गाने लिखे थे, दिल तो पागल है दिल दीवाना है। ये जो गाना था इसकी शूटिंग यूरोपा पार्क में हुई थी और कमाल की बात तो यह है कि जब मैं ये फिल्म देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा था कि इस फिल्म में शाहरुख खान होंगे, लेकिन फिल्म में ही मुझे पता लगा कि शाहरुख खान नहीं, ये गाना तो अक्षय कुमार पर पिक्चराइज है। जी मुझे भी नहीं पता था कि इस फिल्म में अक्षय कुमार है जब तक कि मैं फिल्म देखने चला नहीं गया था। बहुत छोटे छोटे थे हम जब ये फिल्म आई थी, लेकिन शाहरुख खान के फैन थे तो फिल्म देखना तो लाजमी था, देखना जरूरी था। देखी और बड़ा मजा आया। शाहरुख खान की सारी ड्रेसेस जो उन्होंने पहनी थी वो फैशन ट्रेंड बन गई थी उस साल। जैसे वो बारिश वाला गाना था ना, चक दुम दुम चक दुम दुम, इस गाने में शाहरुख खान ने एक शॉर्ट कुर्ता पहना था और माधुरी दीक्षित ने कुर्ती वाला सूट पहना था। ये दोनों ही उस वक्त बहुत डिमांड में आ गए थे। गाने इस फिल्म के लाजवाब थे। कौन से गाने की बात करूं मैं, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए, या फिर वो दिल ले गई जो शुरू शुरू में आता है आशा भोंसले और उदित नारायण जी की आवाज में, और वो चांद ने कुछ कहा। ये गाना जो था इसके बाद से हर वैलेंटाइंस डे पर बजाया जाता था, बजता था, सुनाई देता था। तो ये जादू था यश चोपड़ा की डायरेक्टेड इस फिल्म का। वाकई दिल को पागल करके रख दिया था इसने। एक अवार्ड के बारे में मैं आपको बताना भूल गया। इस फिल्म के कोरियोग्राफर जो थे ना, शामक दावर थे, और उन्हें नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए सम्मानित किया गया था। तो चलिए काम करते हैं, आप भी थोड़ा सा नाच लीजिए, झूम लीजिए, मस्ती कर लीजिए, इन नगमों को सुन लेते हैं और इस यादों की कारवां को और आगे बढ़ाते हैं। आप सुनते रहेगा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। दिस इज सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो।

वेलकम बैक, मैं हूं समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर यादों का कारवां लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं। और आज यादों का कारवां गुजर रहा है 1997 के साल से, उसके बाद हम दूसरे इयर्स की बात करेंगे। लेकिन अभी तो बात करते हैं इसी साल आई एक सस्पेंस, थ्रिल और एक्शन से भरपूर फिल्म की। राजीव राय के डायरेक्शन में बनी थी ये फिल्म, एनी गेसेस, कोई बताएगा? हाँ, दुनिया हसीनों का मेला वाली फिल्म, अब कोई बताएगा? ओहे, सभी बता रहे हैं, सबको पता है दुनिया हसीनों का मेला किस पर पिक्चराइज था और कौन गा रहा था। हा? गुप्त थी ये फिल्म, बॉबी देओल पर पिक्चराइज था ये गाना। काजोल उनके साथ हीरोइन थी और एक हीरोइन थी।

वजह पता क्या थी? मेरे दोस्त ये फिल्म पहले देखा है थे और उन्होंने मुझे बता दिया था, सस्पेंस खोल के रख दिया था इस फिल्म का, कि काजोल है इसमें किलर, मर्डरर। बस हो गया काम तमाम, हमने काम नहीं देखेंगे अब। लेकिन हमने तब तो नहीं देखी, लेकिन जब टीवी पर आई तब जरूर देखी थी। बेस्ट विलेन का अवार्ड ले गई थी काजोल इस फिल्म के लिए, फिल्म फेयर अवार्ड। इस फिल्म में बजने वाला जो बैकग्राउंड म्यूजिक था उसके लिए विजू शाह को मिला था बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड। और जो गाना था गुप्त गुप्त, जो म्यूजिक था, जो कंपोजिशन थी विजू शाह की, वो कहीं कहीं से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी। आप समझ रहे हैं कहां से? वेस्ट से और कहां से। जो गाना था गुप्त गुप्त वो इंग्लिश गाना था डीप फॉरेस्ट बाय द ग्रुप डीप फॉरेस्ट। और वो जो गाना है दुनिया हसीनों का मेला, वो था मस्तू, एक जैपनीज कंपोजर ने कितारो, उनका मस्तूरी गाना जो था वहां से ऑलमोस्ट एज इट इज उठाया गया इसकी जो धुन है। अब ठीक है भैया, हम तो बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं, बड़े इंस्पिरेशनल आदमी है, कोई भी इंस्पायर कर लेता हमें। हा? तो म्यूजिक तो वैसे भी क्या है, बाउंड्री लेस होता भैया, कहीं से भी आया ले लिया। पर गाने बड़े कमाल के थे। हा? हमने तो ये जैपनीज गाना सुना नहीं था ना, आपने सुना था क्या? हो सकता है आपने सुना हो, हमने नहीं सुना था, लेकिन हमने इस हिंदी वर्जन को जरूर सुना। आप कौन सा वाला सुनेंगे? हिंदी सुनेंगे ना। चलिए सुन लेते हैं और यादों की कारवां को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं समर आपके साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

वेलकम बैक, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत, मैं हूं समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेकर हाजिर हूं यादों का कारवां। और आज हमारा ये कारवां गुजर रहा है 1997 के ईयर से। बहुत ही बेहतरीन फिल्में इस साल आई, उनमें से एक फिल्म थी इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी फिल्म इश्क। आमिर खान, अजय देवगन, काजोल, जूही चावला, सदाशिव अमरापुरकर, जॉनी लीवर जैसे कलाकारों ने इसमें जबरदस्त एक्टिंग की और कमाल की कॉमेडी थी ये फिल्म, बहुत ही बढ़िया। हालांकि हर तरह का फ्लेवर था इसमें, कॉमेडी भी थी, म्यूजिक कमाल का था, उसके अलावा इमोशनल सीन्स हैं बाद में। भाई फिल्म का नाम इश्क था, तो जब इश्क होता है तो दिल भी टूटता है, कुछ गलत फहमियां भी होती हैं, ऐसे में एक सैड सॉन्ग भी बन जाता है और फिर कहानी का बाद में जाकर हैप्पी एंड भी होता है, तो सब कुछ था इस फिल्म में। म्यूजिक किसका था? अनु मलिक का, बहुत ही कमाल का म्यूजिक, बहुत हिट हुआ था ये म्यूजिक। नींद चुराई मेरी, कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, जिसे मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब ने लिखा था। वहीं इस फिल्म का दूसरा गाना हमको तुमसे प्यार है, अनु मलिक और अभिजीत ने गाया ये गाना। ये दोनों हीरो गाते हैं फिल्म में, और ये पता है किसके लिए गाते हैं? हीरोइंस के लिए नहीं गाते हैं, ये एक मॉडल थी श्वेता मेनन, उन पर पिक्चराइज किया गया था, और ये दोनों उनको छेड़ते हुए गा रहे थे। दोस्त दोनों ही कह रहे थे कि हमें तुमसे प्यार है, मतलब दोनों ही सोच रहे थे कि पट्टी तो पट्टी वरना राखी। वेल, जोक्स अपार्ट, लेकिन इस गाने में जो श्वेता मेनन ने स्कर्ट पहना था, वो स्कर्ट गर्ल्स में क्रेज बन गया था। अच्छा, उसके अलावा एक और बात बताता हूँ आपको कि ये जो गाना था इसे अनु मलिक ने लिखा है, बाकी एक गाना जावेद अख्तर साहब ने भी लिखा है, इश्क हुआ कैसे हुआ, जो थोड़ा सा स्लो वर्जन है, जो रोमांटिक गाना है, और देखो देखो जानम हम, ये राहत इंदौरी साहब ने लिखा, उदित नारायण और अलका याग्निक ने इसे गाया। जूही चावला और काजोल की एक साथ ये एकमात्र फिल्म है, और शायद यही वो फिल्म थी जहां से काजोल और अजय देवगन का इश्क जो था वो शुरू हो गया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि काजोल और अजय देवगन के बीच ऐसा कुछ चल रहा है। इस फिल्म के बाद सब कुछ चला भी और सब कुछ हो भी गया, आपको तो पता ही है, और आज दे आर इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन कपल्स में इनकी गिनती होती है। चलिए फिलहाल एक काम करते हैं, इस फिल्म के कुछ गाने सुन लेते हैं, इतने सारे बेहतरीन नगमों का मैंने जिक्र किया, और उस दौर के कुछ और गानों के साथ इस सफर को आगे बढ़ाते हैं, और मैं मिलता हूं इन गानों के बाद आपसे। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर कहीं जाएगा नहीं, स्टे कनेक्टेड।

0: to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature wet and non-veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
5: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
6: लीजिए, समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
7: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, that too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
8: Good morning.
6: यादों का कारवां लिए एक बार फिर से हाजिर है समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। आज ये कारवां गुजर रहा है 1997 के ईयर से फिलहाल, और कौन सी फिल्म की बात करूं मैं, जुड़वा, जो अभी थोड़े दिन पहले वापस भी आई थी, मैं उसी की बात कर लेता हूं। मुझे है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, अनु मलिक और सुषमा श्रेष्ठ की आवाज में। ये गाना मुझे तब भी बहुत पसंद था और इस बार भी जब आया तो मुझे अच्छा लगा, बहुत मजेदार गाना। डेविड धवन के डायरेक्शन में बनी थी फिल्म, सलमान खान थे जुड़वा और उनके साथ करिश्मा कपूर, रंभा, शक्ति कपूर, अनुपम खेर, रीमा लागू और बिंदु इस फिल्म में काम कर रही थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्मों में शुमार हो गई थी। इस फिल्म का गाना टन टन आटन टन टन तारा अभिजीत और पूर्णिमा की आवाज में बड़ा ही मस्ती से भरा गाना है। तो भैया, मस्ती से भरा गाना तो रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आना ही चाहिए ना, तो सुनाएंगे आपको। लेकिन अभी और भी बात कर लेते हैं इस फिल्म के बारे में। एक से बढ़कर एक गाने थे और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना अलग तरह का म्यूजिक था इसमें। अनु मलिक को जैसे खुली छूट दी गई थी कि भैया जो डिजाइन करना है, जो जैसा बनाना है म्यूजिक बना लो। प्योर अनु मलिक का तड़का इस फिल्म के गानों में आपको सुनाई देगा। एक एक गाना, कोई सा भी गाना उठा के देख लीजिए आप, वो वाला तू मेरे दिल में बस जा, बिल्कुल अलग तरह का फ्लेवर है। या फिर वो अनु मलिक की आवाज में गाया हुआ गाना गो ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज बेस्ट, भैया हर नेशनल फेस्टिवल पे आज भी बजता है गाना। खैर जी, सलमान खान के लिए ये फिल्म इस मायने में बहुत ही ज्यादा अलग तरह की फिल्म थी, अलहदा थी कि उनका जो कॉमेडी सेंस था उसे डेविड धवन ने पहचाना और इस फिल्म के जरिए दर्शकों के सामने रखा और दर्शकों ने बहुत पसंद किया इसे। और कहीं ना कहीं सलमान खान के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया कि वो कॉमेडी कर सकते हैं। कॉमेडी सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है एक्टिंग का, बाकी चीजें आप कर सकते हैं, आंसू गिराने के लिसनिंग लगा के गिरा सकते हैं, लेकिन कॉमेडी में तो आपको टाइमिंग चाहिए ही चाहिए। भाई जोक तो सभी सुना लेते हैं, लेकिन अच्छा जोक कुछ ही लोग सुना पाते हैं, और इसको पहचान कर डेविड धवन ने बाहर निकाला और इस तरह से ये बेहतरीन कॉमेडी फिल्म सामने आई। पहले इसका नाम जन्मभूमि रखा जाने वाला था, लेकिन इसे बाद में बदलकर जुड़वा कर दिया गया। तो काम करते हैं, जुड़वा से एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ाते हैं सफर को। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर जुड़े रहेगा समर के साथ। मैं बस यूं गया और यूं आया। स्टे कनेक्टेड।

सिंगापुर जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने, तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: नमस्कार, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल, स्वागत, मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं यादों का कारवा। और आज ये कारवा गुजर रहा है 1997 के साल से। ये वो साल था जब शाहरुख खान की दो बहुत बड़ी फिल्में आईं, पहली जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं, दिल तो पागल है, और दूसरी वो जिसके बारे में न जाने क्या क्या कहा गया, सुभाष घई की बहुत लंबी फिल्म, 3 घंटा 11 मिनट की फिल्म थी, परदेश। 8 दिसंबर 1997 को ये रिलीज हुई और इसमें पहली बार सुभाष घई साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के इतर दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर को चांस दिया और वो थे नदीम श्रवण। बहरहाल इस फिल्म के कुछ गानों का जिक्र कर लेता हूं मैं। बात अगर महबूबा की हो तो हर कोई चाहता है कि उसकी महबूबा सामने हो, सिर्फ तस्वीर में ना हो, और इसी बात को शाहरुख खान ने अपने अंदाज में कहा इस गाने के जरिए, जरा तस्वीर से निकलकर सामने आ। नदीम श्रवण का ये म्यूजिक था, आनंद बख्शी ने गाने लिखे, और इस गाने को तो कुमार सानू और अलका याग्निक ने जिस गहराई के साथ गाया, सुनने में बड़ा मजा आता है। इस फिल्म का एक गाना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, अलग तरह का म्यूजिक था इसमें, नहीं, कुमार सानू की बड़ी सोलफुल आवाज है इस गाने में। वैसे इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ थी महिमा चौधरी, अमरीश पुरी, आलोक नाथ, अपूर्व अग्निहोत्री। पूरी फिल्म की स्टोरी देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये फिल्म चितचोर की कहानी से इंस्पायर्ड है, नहीं? और फिर ऐसी एक और फिल्म आई थी, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, ऑलमोस्ट सेम थी ये फिल्में। इस फिल्म की म्यूजिक की अगर मैं बात करूं तो हर तरह का म्यूजिक था। वनराज भाटिया ने भी एक कंपोजिशन दी थी जिसमें वो वेलकम टू अमेरिका, जब वो अमेरिका जाती है महिमा चौधरी तब आता है, फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह पर पिक्चराइज एक कवाली थी, नहीं होना था नहीं होना था, जो क्लाइमेक्स पर आती है। अलका याग्निक, हेमा सरदेसाई और उदित नारायण के साथ साबरी ब्रदर्स ने इसे गाया था, और बड़ी लंबी कवाली थी ये और बहुत ही बढ़िया कवाली थी। अच्छा, इस फिल्म का एक गाना इसमें भी था, एक पेट्रियोटिक सॉन्ग, आई लव माई इंडिया, कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन की आवाज में, और साथ में अमरीश पुरी भी एक तड़का लगा जाते हैं। अच्छा, इस फिल्म के साथ एक बड़ी ही मजेदार बात थी, ये जो फिल्म की हीरोइन थी ना महिमा चौधरी, इनका नाम महिमा चौधरी नहीं है, ये रितु चौधरी है, लेकिन क्योंकि एक सुपरस्टिशन है एक दिमाग में उनके बाद थी सुभाष घई साहब के, कि मेरी हीरोइन जो होंगी उनका जो नाम है वो एम लेटर से शुरू होना चाहिए, तो जैसे मनीषा कोराला थी ऐसे ही उन्होंने रितु चौधरी का नाम बदलकर महिमा चौधरी कर दिया और फिल्म हिट हो गई। और शायद इसीलिए सुपरस्टिशंस रह जाते हैं लोगों के, क्योंकि वो काम कर जाते हैं। फिलहाल एक काम करते हैं कि हम इन नगमों के साथ इस सफर को आगे बढ़ा लेते हैं। फिल्मों की ये बातें यूं ही होती रहेंगी, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुनते रहेगा और एंजॉय कीजिए, मस्ती करते रहिए। और क्या इन फिल्मों के वक्त आप कर रहे थे उस जमाने में, आप हमें जरूर लिखकर अपनी यादें ताजा कीजिए प्लीज। हाँ, स्टे कनेक्टेड।

0: सिंगापुर बोर्ड हो गेम खेलनी है चैलेंज एक्सेप्ट करोगे एक्साइटेड
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963. 40% off, 40% joy alukas.
2: 40% off? Oh my god, let's go, let's go.
3: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge.
4: Soon, soon, baba, soon, soon, baba, soon, soon, soon.
3: Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.
5: वेलकम बैक, मैं हूं समर रेडियो में 24/7 लाइव पर। अब तक आपको यादों का कारवां में मैं गुजार रहा था 1997 के ईयर से। अब चलते हैं अगले साल में 1998 में हम प्रवेश कर लेते हैं और इस फिल्म का नाम नहीं लिया तो फिर क्या किया। विक्रम भट्ट डायरेक्टेड फिल्म गुलाम की आती क्या खंडाला वाली फिल्म, बहुत ही कमाल की ये फिल्म थी। आमिर खान, रानी मुखर्जी, दीपक तिजोरी, मीता वशिष्ठ इस फिल्म में थे और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा कर रख दिया था। जतिन ललित का म्यूजिक था और सबसे पॉपुलर गाना वही था आती क्या खंडाला। समीर ने लिखा था इसे और आमिर खान ने गाया अलका याग्निक के साथ। पहली बार मेरे ख्याल आमिर खान ने अपनी आवाज दी थी, राइट, पहली बार ही दी थी। और इस फिल्म में एक टशन दिखाते हैं आमिर खान, जीप पर जलती हुई माचिस की तीली लगाकर वो बुझा देते हैं। इसकी तो भैया बहुत ज्यादा कॉपी की गई थी, हर जगह जिसको देखिए वो यही करता नजर आता था। मैंने भी किया कई बार और इसमें कुछ नहीं हो रहा, मतलब आप करके मत देखिएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप करके देखिए, मगर इतना खतरनाक भी नहीं है, मैंने करके देखा है। एनीवे, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप करें, पर हम तो क्या है कि यादों को ताजा कर रहे हैं ना, तो कुछ यादें आ जाती हैं। अच्छा, मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की एक और बड़ी कमाल की बात थी इस फिल्म में और उसके लिए इस फिल्म के एक सीन को बेस्ट सीन का अवार्ड भी मिला। और वो सीन था जब आमिर खान एक रेस लगाते हैं, रेलवे ट्रैक पर दौड़ते हैं और जस्ट एक सेकंड पहले, 24 फ्रेम पहले वो रेल के इंजन के सामने से कूदते हैं। मतलब फिल्म में तो आपको ये नजर नहीं आता, फिल्म में तो आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल इसी वक्त गाड़ी निकली है, लेकिन वाकई में सिर्फ एक सेकंड पहले वो ट्रैक पर से हटे थे ताकि शॉट बिल्कुल नेचुरल आए। कमाल है मिस्टर परफेक्शनिस्ट। इस बात का खुलासा जब एडिटिंग हो रही थी इस फिल्म की तब विक्रम भट्ट ने किया। उन्होंने एक एक फ्रेम को जोड़कर देखा तो सिर्फ 24 फ्रेम का अंतर रह गया था जब आमिर खान के पास से वो ट्रेन गुजरती है, एक सेकंड। शायद तभी आमिर खान की फिल्में इतनी दमदार बन जाती हैं कि उन्हें देखने का मन करता है, बार बार देखने का मन करता है। उनके परफेक्शन की एक और कहानी इसी फिल्म से जुड़ी है, मैं आपको बताता हूँ कि एक क्लाइमेक्स सीन है ना जब इसका रॉनी से लड़ते हैं, वो बॉक्सिंग होती है उनकी, तो वो जो लड़ाई है उसके लिए आमिर खान ने 8 दिन तक मुंह नहीं धोया था ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे और जो जहन में लेकर जो कैरेक्टर उन्होंने ओढ़ लिया है उस क्लाइमेक्स के लिए वो वैसा बना रहे। इसे कहते हैं परफेक्शनिस्ट। भाई हैट्स ऑफ टू यू आमिर खान साहब, बहुत ही कमाल। अच्छा, इस फिल्म का एक सीन मुझे और अच्छा लगता है जब आमिर खान लास्ट में रॉनी को हरा देते हैं। शरद सक्सेना थे रॉनी, जो उस बस्ती का गुंडा होता है जिसको बाद में ये गुलाम आमिर खान हरा देता है। तो जब आमिर खान उनको हराते हैं तो शरद सक्सेना सीधे जमीन पर गिरते हैं बगैर हाथों का सहारा लिए सीधे। वो सीन कमाल का है। ये भी मैं आपको बताऊं क्या, अंदर की बात, ये भी मैं आपको बताऊं क्या, मैंने इस सीन की भी कॉपी की थी लेकिन पलंग पर, गद्दों पर, उसमें भी चोट आती थी मेरे, तो पता नहीं वहां क्या लगाया होगा उन्होंने। और शरद ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि ये कैसे हो गया मुझे पता नहीं, शायद आमिर खान सामने थे, वो जब हर काम परफेक्शन से करते हैं तो शायद मुझसे भी ये परफेक्शन निकल आया। कमाल की ये फिल्म, कभी देखने का मौका मिले तो जरूर देखेगा। एक काम करता हूँ, फिलहाल इस फिल्म के गाने तो आपको सुनवाई देता हूँ। आप क्या कर रहे थे जब गुलाम रिलीज हुई थी, बताइएगा हमें। और सुनते रहिएगा रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव, सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो।

आए यूं मुस्कुराए कि हम अपने होश आवाज खो बैठे और हम ये बताना ही भूल गए कि हम कौन हैं। नमस्कार, मेरा नाम है समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आपसे मुखातिब हूँ यादों का कारवां लेकर। जी हाँ, आज हमारा ये जो कारवां है 1997 और 1998 की फिल्मों से होकर गुजर रहा है। तो अब बात कर रहे हैं हम उस फिल्म की जिसमें यही सब कुछ था, दोस्ती, प्यार और एक प्यार का ट्राइंगल, कुछ कुछ होता है। फिल्म सुपरहिट थी और शाहरुख खान के साथ काजोल और रानी मुखर्जी थी, अनुपम खेर थे, सलमान खान सरप्राइजिंग एलिमेंट वो भी थे इस फिल्म में, साजन जी कराए वो उन्हीं पर पिक्चराइज गाना है, करण जौहर ने ये फिल्म डायरेक्ट की थी। करण जौहर ने जब अपने पिताजी यश जौहर को इस फिल्म का जिक्र किया और इसका टाइटल बोला खाली कुछ कुछ होता है, तो उन्होंने कहा कुछ कुछ होता है साउंड्स इंटरेस्टिंग, ठीक है बनाओ ये फिल्म, और उनको परमिशन मिल गई, ये फिल्म बना ली। उन्होंने कमाल की फिल्म बनाई, उनको पूरा यकीन था कि ये फिल्म हिट होगी और वाकई हिट हुई, बहुत बड़ी हिट हुई। म्यूजिक जतिन ललित का था और गाने लिखे थे समीर ने इस फिल्म के। टाइटल ट्रैक कुछ कुछ होता है को उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया और बहुत ही बढ़िया गाना है, मुझे बहुत पसंद है, आज भी बहुत अच्छा लगता है। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, और इसमें भी वो लाइन तो बहुत ही अच्छी है, अब तो मेरा दिल, हाँ हाँ क्या बात है, जागे ना सोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, आई लाइक इट। इसके अलावा दूसरा गाना तुझे याद ना मेरी आई, अलका याग्निक, उदित नारायण और मनप्रीत अख्तर ने इसे गाया। अच्छा, इसके बाद ना ऐसे कॉलेजेस में पढ़ने का बड़ा बड़ा बड़ा क्रेज हो गया था कि यार ऐसे भी कोई कॉलेज होते हैं, हैं? वेल, ये तो जोक था, ऐसे कॉलेज में पढ़ते थोड़ी हैं। खैर, लेकिन एक बात जरूर हो गई थी कि बास्केटबॉल काफी पॉपुलर हो गया था। करण जौहर की डेब्यू फिल्म थी, पहली फिल्म थी, और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद टीना के रोल के लिए उन्होंने रानी मुखर्जी के लिए रोल कहा। करण जौहर की ये पहली फिल्म थी और इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, काजोल को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला और सलमान खान को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस फिल्म का वो जो गाना है ना, ये लड़का है दीवाना दीवाना, इसमें एक बाइसिकल सीक्वेंस होती है, काजोल इस सीक्वेंस में कंट्रोल खो बैठी और उनकी जो बाइक है, मतलब उनकी जो साइकिल थी, वो गिर पड़ी और उन्हें सीधे मुंह पर चोट आई, मुंह के बल गिनी थी वो, और वो बेहोश हो गई और उसके अलावा घुटने में बहुत चोट आई, एक दिन तक शूटिंग रोक दी गई थी। और सुनने में तो ये भी आता है कि उस एक दिन के लिए काजोल की मेमोरी चली गई थी, उनकी याददाश्त खो गई थी और उनको शाहरुख खान ने ये कहा कि तुम एक जूनियर आर्टिस्ट हो बस। करण जौहर और आदित्य चोपड़ा के सेट्स पर प्रैंक बड़े होते हैं, बड़े मजाक वजाक चलते रहते हैं। फिलहाल एक काम करते हैं, हम भी इस सफर को आगे बढ़ा लेते हैं इन गानों के साथ।

0: जिंदगी में हर इंसान को एक बार प्यार जरूर होना चाहिए। प्यार इंसान को अच्छा बना देता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं भी आपसे ही कहता हूँ, मैं हूँ समर रेडियो मजी 24/7 लाइव पर लेकर यादों का कारवां। लेकिन फिलहाल तो मैं आपको एक फिल्म का सुपरहिट डायलॉग सुना रहा हूँ, प्यार तो होना ही था, जिसे डायरेक्ट किया था अनीस बज्मी ने और म्यूजिक दिया था जतिन ललित ने। अनीस बज्मी इससे पहले कहानियां लिखा करते थे, लेकिन ये पहला एफर्ट था उनका फिल्म डायरेक्शन का, और कमाल की फिल्म बना डाली उन्होंने। हालांकि ये पूरी फिल्म जो है एक हॉलीवुड फिल्म है, फ्रेंच किस, वहां से इंस्पायर्ड कहूं क्या, चलिए इंस्पायर्ड कह लेता हूं, क्योंकि भाई इंडियन अडेप्टेशन तो करना ही पड़ता है ना, तो इंस्पायर्ड थी। वैसे फ्रेम टू फ्रेम वैसी की वैसी ऑलमोस्ट मैंने दोनों देखी। म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक दिया था जतिन ललित ने, और कमाल का म्यूजिक दिया था, उसमें ज्यादा इंस्पिरेशन नहीं थी, वो ओरिजिनल था। खास तौर से वो जो गाना था ना, प्यार तो ना ही था, ये वाला जो रेमो फर्नांडीज ने गाया था उनके साथ हेमा सरदेसाई ने, बहुत बढ़िया टाइटल ट्रैक जो क्रेडिट रोल पर चलता है, बहुत ही बढ़िया गाना था ये। माफ कीजिएगा, हेमा सरदेसाई ने नहीं, जसपिंदर नरूला ने रेमो फर्नांडीज का साथ दिया था, और इस गाने के लिए जसपिंदर नरूला को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला था। तुरु तुरु ऐसे शुरू होता है गाना, बहुत ही बढ़िया, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, इसके अलावा सारे गाने इस फिल्म के बहुत ही बढ़िया थे। अजनबी मुझको इतना बता उदित नारायण और आशा भोसले ने गाया, और वो जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, बहुत सॉफ्ट, बहुत बढ़िया, बहुत जादू बिखेरने वाला गाना। और फिर उस गाने को कैसे भूल सकते हैं, आज है सगाई सुन लड़की के भाई, अलका याग्निक और अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में गाया ये गाना, शादी के घर में आज भी जरूर जरूर बजता है। बेहतरीन फिल्म थी, बहुत बेहतरीन म्यूजिक इसका। एक काम करते हैं, म्यूजिक के सफर को आगे बढ़ा लेते हैं इन गानों के साथ, क्या बोलते हैं आप? बहुत सारी बातें करता हूं ना मैं, इस बार कम करता हूं, ये गाने सुन लेते हैं। सुनते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव, सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो।
1: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
2: हाँ, मैं एक लड़की, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं, वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है।

0: डॉग रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा kg मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी।
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी

0: मार्ट इज देयर
1: क्या जी?
0: जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
1: वाह जी, क्या बात जी।
0: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

वेलकम बैक, मैं हूँ समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। अगली फिल्म का जिक्र कर लें, सीधे यादों का कारवां सुन रहे हैं आप। चलिए बात करते हैं दीपा मेहता के डायरेक्शन में बनी फिल्म 1947 अर्थ की। फिल्म में आमिर खान, नंदिता दास, शबाना आजमी, राहुल खन्ना, कुलभूषण खरबंदा जैसे कलाकार कमाल के अभिनय के साथ पहचाने गए। और उनके इस अभिनय के लिए राहुल खन्ना की खास तौर से मैं बात करूं तो उन्हें बेस्ट डेब्यूटेंट एक्टर का अवार्ड मिला इस फिल्म के लिए। मेरे ख्याल से आमिर खान की नेगेटिव शेड वाली ये पहली फिल्म थी। और इस फिल्म के गानों में एक अलग तरह की महक थी, एक अलग तरह का फ्लेवर था। इस फिल्म के गाने रुत आ गई रे, सुखविंदर ने जिस तरह से इसे गाया है ना, बहुत ही कमाल का गाना है। रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, जावेद अख्तर साहब के लिखे बोलों को एआर रहमान साहब ने, द ग्रेट एआर रहमान ने अपनी धुनों से सजाया था। और इसी फिल्म का एक और गाना बड़ा हिट हुआ था, बन्नोरानी बड़ी सयानी, साधना सरगम ने बहुत ही कमाल का ये गाया। और एक गाना और था धीमी धीमी, हरिहरन ने बहुत ही सॉफ्टली इस गाने को गाया था। और ये गाना जैसे सीधा ऐसे मक्खन की तरह से दिल में उतर जाता है, बहुत कुछ कह जाता है। तो चलिए, इतनी सारी बातें अगर हो गई हैं इस फिल्म के म्यूजिक की, तो एक आध गाना तो सुन ही लेते हैं, क्या कहते हैं आप। और इसी के साथ मुझे भी दीजिएगा इजाजत, मिलूंगा आपसे एक और बेहतरीन शो के साथ यादों का कारवां में। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, बाय बाय।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: रात अकेली है
2: तो क्या हम तो

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: रात अकेली है
3: तो क्या हम तो

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक, नॉनस्टॉप मस्ती, ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
0: रात अकेली है तो क्या, हम

0: छत पक्षियां रंगा दी, धूप बरसाती, सुन रंग धरती का गोटे रंगा है लहरिया।
1: दोनों को ही चाहतो न चाहतो से मारा इशकारा इशकारा इशकारा इशकारा।

धूम मचे मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार जहां चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार जहां चार यार।

को कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे। आ

जाने तमन्ना, अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं।

माता देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने

दोनों ऐसे मिले हे हे, फिर दोनों ऐसे मिले प्यार में ही डूब गए। प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार, जहां चारिया

0: छुट्टी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
1: Yo ho, I experienced that too.

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
1: जोश में रहो।
2: ओहो, अरे कोई सांस तो छेड़ो। झुका के सर को पूछो, मैडम हाउ डू यू डू।
3: नहीं नहीं नहीं भाभी, ऐसे नहीं, एक्टिंग करके बताओ।

0: ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो,
1: अरे तू भी चुप हो जा।
0: खामुखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
2: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
3: ऐसा क्या?
2: हाँ।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक

नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: टेन नाइन एट सेवन

0: बात शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

0: जोर सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: कितने बोरिंग हो गए हैं आप? अब आप कहोगे नुपुर ऐसा नहीं है, हमारी लाइफ बहुत हैपनिंग है। अच्छा सच बताओ, लास्ट टाइम थिएटर में कौन सी मूवी देखने गए थे?
3: बहुत वक्त हो गया है ना।
2: तो बोरिंग हुए ना अब? आप एंटरटेनमेंट के लिए वक्त ही नहीं निकाल पा रहे हो। ठीक है, थोड़ा बहुत तो वक्त निकाल लेते जब आप ट्रैवलिंग के दौरान हमें सुनते हैं या घर पे बैठे बैठे सुनते हैं तो अच्छा लगता है। पर नहीं, वक्त निकालो थोड़ा, है ना, और अपना एक्सपीरियंस हमारे संग भी शेयर किया करो। बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि मूवी रिव्यू हम तो दे देते हैं, उसमें वो मजा नहीं आता, लेकिन हाँ जब आपकी आवाज में हम तक रिव्यूज निकल कर आते हैं कि नुपुर जाओ ये मूवी देख कर आओ, तो मजा आता है। सो डेफिनेटली ऑन दिस नोट, रेडियो मस्ती 24/7 लाइफ पर मैं आज नुपुर आ चुकी है आपसे मुलाकात करने। चलो चलो चलो, मुलाकात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और ऑफकोर्स बॉलीवुड की इनसाइट्स आप तक पहुंचाते हैं। हाँ हाँ, कौन सी मूवी का रैप अप हो चुका है, कौन सी मूवी आने वाली है, सब बताऊंगी। डोंट गो एनीवेयर।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड?
4: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
5: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
6: पहले ना हॉरर मूवीज में ऐसा होता था कि सुनो वो लौट कर आएगा, जरूर लौट के आएगा, याद रखना वो लौट के आएगा, ऐसे समथिंग मिमिक्री होती थी। लेकिन अब तो ये सच हो चुका है यार। मतलब आप समझ गए, कोई भी मूवी अच्छी जाती है ना तो उस मूवी को वापसी के साथ लाया जाता है, लाया जाता है, लाया जाता है। तो आपको बताना चाहूंगी रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, और इस बार वापसी हो रही है सालों बाद शिवम की। अब शिवम कौन है बताती हूँ, इमरान हाशमी। अब इमरान हाशमी शिवम किस में है? आवारा पन 2 मूवी में, और ये कब रिलीज होगी? 14th of August। और इस बार इसकी जो कहानी है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दी गई है। हाँ जी, और ये बॉक्स ऑफिस पे लड़ने वाले है सनी देओल स्टारर 1947 लाहौर से। तो द पॉइंट इज, इमरान हाशमी की फैन फॉलोइंग एक अलग डायरेक्शन में है, सनी देओल की फैन फॉलोइंग एक अलग डायरेक्शन में है। सो रोमांस वर्सेस देशभक्ति क्या जीतेगा, ये तो वक्त बताएगा। बिकॉज रिसेंटली इमरान हाशमी ने रैप अप शॉट जरूर डाल दिया था इस मूवी का कि भैया हमारी मूवी कंप्लीट हो चुकी है, तैयार रहिए सरप्राइजेस के लिए। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर कुछ और भी सरप्राइजेस, कुछ और भी बातें, कुछ और भी अलग अंदाज जरूर आपके साथ शेयर करेगी। सो डोंट गो एनीवेयर, आती हूं मैं जस्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: क्या आप जामुन खाने के दीवाने हैं? आय हाय आय हाय, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो जो बचपन वाली टॉफीज आती है, कैंडीज आती है ना, उसके थ्रू वो जामुन का टेस्ट लेना बड़ा ही पसंद करते हैं। बाय द वे, ये जो नॉस्टैल्जिक फील कराने वाली कैंडीज है, वो भी इंडियन ऑथेंटिक टेस्ट के साथ, कहाँ मिलेगी? वो भी घर बैठे बैठे, बता देती हूँ, GGMartOnline.com। हाँ जी, यहाँ पर एक तो ग्रोसरी का आपको ABCD मिल जाएगी, फार्म फ्रेश स्ट्रेट आपके घर तक पहुंच जाएंगे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। एंड इन सारी चीजों के साथ साथ अगर आप आमंड्स एंड पिस्ता सीड्स कैशियूज बहुत सारी चीजें अगर आप प्रीमियम रेंज की चाहते हैं तो वो भी घर बैठे बैठे मंगवा सकते हैं। और हाँ, मैं बात कर रही थी जामुन की, तो एक्सक्लूसिव इनकी कृषिवल रेंज है जिसमें ये आपको ना जामुन के बने हुए ट्राइंगल्स, या फिर वो आता था ना आम पापड़, ये पापड़ वो पापड़, उस तरह से आपको ना ये जामुन पापड़ मिल जाएगा, राइट? और ये ट्राइंगल्स जो है ना वो आपको ओरिजिनल जामुन का स्वाद देने वाले हैं। आए हाय, मुझे तो बोलते बोलते ही भूख लग गई यार। हाँ, सो GGMartOnline.com लॉग ऑन करो एंड आपकी लिस्ट बनते बनते बढ़ ही जाएगी, कम कहीं नहीं होगी। मस्ती मॉर्निंग शो आपने ट्यून किया है मेरे यानी RJ नुपुर के साथ।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा kg मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी,
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
2: क्या जी?
3: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर. जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
2: वाह जी, क्या बात जी.
3: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर.

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off. Oh my god. Let's go.
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
3: Singapore, prepare for impact.
4: 3, 2, 1.
5: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Lion Challenge. City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
6: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
7: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन
8: जोश में रहो।
9: देखो आजकल अच्छे इंसान की कोई वक्त नहीं है, आपकी तरफ कोई मुड़कर भी नहीं देखेगा, लेकिन जैसे ही आप अपनी और दूसरों की लाइफ में विलन बन जाएंगे तो जरूर कोई आपको मुड़ मुड़ के देखना चाहेगा। यही ख्याल ऋतिक रोशन को सता रहा है और उन्होंने ये कह दिया है कि सुनो सुनो सुनो, मैं अच्छे इंसान का रोल करते करते थक चुका हूँ। सो हेलो हाय, मैं आरजे अनुपम मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ, एंड द पॉइंट इज ऋतिक रोशन को अपने से टकराता हुआ कोई रोल नहीं दिख फिल्मों में। उन्होंने कह दिया उन्हें थोड़ा ग्रे शेड टाइप का कैरेक्टर निभाने का मन है, लेकिन उन तक जो स्क्रिप्ट्स पहुंच रही हैं उसमें सिर्फ अच्छे-अच्छे रोल का जिक्र हो रहा है। दैट्स व्हाई ऋतिक रोशन जो है ना वो नजर नहीं आ पा रहे। होता है, जब जो चाहिए होता है तब वो कहां मिलता है यार। बाय द वे, आपको जो चाहिए यानी कि बड़े सारे प्राइजेस और एक ऐसा मौका कि आपका नाम उभर उभर के सिंगापुर में आए, तो आपके पास आ चुका है ये मौका। मस्ती मीडिया नेटवर्क लेकर आए हैं द लायन सिटी चैलेंज, यानी कि एक ऐसा गेम शो जो मतलब सिंगापुर का आप कह सकते हैं स्मार्टेस्ट गेम शो है, जिसमें आपकी नॉलेज जीतने वाली है। अगर आप अपने आसपास सिंगापुर में क्या चल रहा है, जनरल नॉलेज में क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, हर कैटेगरी में क्या कुछ चल रहा है, इन सारी बातों में लेते हैं दिलचस्पी, तो आपके नॉलेज का होने वाला है टेस्ट और विनर्स को तो बहुत कुछ मिलने वाला है। पार्टिसिपेट कीजिए, सिर्फ मेरी बातें मत सुनिए। टाइप कीजिए लायन LION और टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप पर हमें भेज दीजिए 9151-8963 पे। फिर आगे के स्टेप्स क्या होंगे हम आपको रिवर्ट बैक करके बता देंगे, तो जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करो। सिंगापुर स्मार्टेस्ट माइंड कुड बी यू। मस्ती मॉर्निंग शो पर मैं आरजे नुपुर।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.